ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैसाख माह की 27वीं तिथि। तदनुसार 17 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: And also infrastructure development that has happened.
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है।

0: समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जाँच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है बीमारी की दशा में। आलेख एवं वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
3: श्रोताओ, आज के वक्त में बीमार होना कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है। विश्व की 95% से अधिक जनसंख्या स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, जिनमें 1/3 लोगों को 5 से अधिक बीमारियां हैं। अकेले भारत में अनुमानित 15 करोड़ लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता है। ये तथ्य 2015-2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में सामने आया। उधर अमेरिका में अनुमानित 129 मिलियन लोगों को कम से कम एक प्रमुख बीमारी है, जिनमें हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि आते हैं। अब तक हुए सर्वे के आधार पर 1,00,000 मानव रोगों की पहचान हो पाई है, जिनमें 80% बीमारियां गंदगी के कारण फैलती है। बात चाहे जो भी हो, हमें इन बढ़ते आंकड़ों को नियंत्रित करना ही है। इस दृढ़ संकल्प के साथ कि हमें बीमारों की तीमारदारी में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि उचित और अच्छे खान पान से हम बीमारियों का फैलाव रोक सकते हैं, फिर भी अगर कोई बीमार हो जाता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उचित परामर्श और दवाओं से उस रोग से लड़ना चाहिए। जिज्ञासा अपने आप में इतनी बलवती होनी चाहिए कि कोई भी रोग आगे बढ़ ही ना पाए। यदि आप स्वयं बीमार हो गए हैं तो सावधानी पूर्वक अपने शरीर का और उसके अभावों की, उसकी कमियों की भली भांति पहचान कर लें। और

0: रूप अपने शरीर के लिए साफ सुथरी जगह का चयन करें और बीमारी से ठीक होने का संकल्प दोहराते रहें। कई बार हम उतने बीमार होते नहीं जितने कि हम खुद को समझ लेते हैं। संत महात्मा कहते हैं, भगवान अपने प्रिय भक्त के पास रहने के लिए बीमारी के रूप में भी आते हैं। अतः बीमारी आते ही एकदम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आशावान होकर दवाओं का सेवन करें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। खाली बैठे रोग की चिंता से मृत्यु के ऊटपटांग सपने देखने की कोशिश मत करें, बल्कि ये भावना रखें कि डॉक्टर के सहयोग से मैं बीमारी की ये जंग जीत लूँगा। बीमारी में हमारा मन टूट जाता है, वो छोटे छोटे भ्रम भी पाल लेता है। एक सुप्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक देश का महाराजा बीमार हो गया। वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबकी सहायता ली गई। कितने ही आए और कितने ही कुछ दिनों तक दवा देकर पीछे हट गए, क्योंकि रोगी ठीक होने का नाम ही न ले रहा था। इस बीच महाराजा ने समझा कि अब वो कभी भी अपने पाँव पर नहीं चल पाएंगे। वैद्य पर वैद्य बदलते गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर महाराजा ने नगर में डोंडी पिटवाई कि जो उन्हें ठीक कर देगा उसे आधा राज्य इनाम में दे दिया जाएगा। ये बात सुनकर एक गरीब ब्राह्मण महलों में पहुंचा और कहा कि वो महाराजा को स्वस्थ कर सकता है। ये बात सुनकर दरबार उसे भीतर ले आए। राजा पलंग पर लेटे हुए थे। ब्राह्मण ने अच्छी तरह से उनका मुँह आयना किया और बोला, ये तो एक आम बीमारी है। हमारे गांव में एक मंगते भिखारी को ये बीमारी हो गई थी, पर मेरे इलाज से वो ठीक हो गई। ये सुनते ही राजा को तो क्रोध आ गया। वो अपने पलंग से खड़े हो गए, चिल्लाकर बोले, इस दुष्ट ब्राह्मण को यहाँ से बाहर ले जाओ। ये मेरी बीमारी को आम साधारण बीमारी बता रहा है। ये मेरी बीमारी को एक भिखारी की बीमारी से जोड़ रहा है, जबकि मैं राजा हूँ। इस ब्राह्मण को कोड़े लगाए जाएं। ब्राह्मण हंसा और बोला, देख लिया महाराज, आपका लकवा ठीक हो चुका है। गौर करने पर राजा को अपनी गलती का बोध हुआ और उसने खूब धन धान्य देकर उसे आधा राज्य सौंप दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि बीमारी में मन नकारात्मक हो जाता है, इसलिए बीमार को चाहिए कि वो नकारात्मकता से दूर रहे, लेटे लेटे ईश्वर का ध्यान करे और मन में सद्विचार रखते हुए समय पूर्वक दवाएँ लेता रहेगा तो रोगी अवश्य ठीक हो जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था बीमारी की दशा में। आलेख एवं वाचक स्वर था श्री प्रमोद कुमार शर्मा का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:10 हुए हैं। आरंभ होता है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। इसमें आज आप सुनेंगे बालकांड दोहा संख्या 74 की पहली चौपाई से दोहा संख्या 77 की चौपाई तक का सहस्वर पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए, कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

ये था कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा हमारे दिल्ली केंद्र से।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, साइलेंट किलर से बचाव, विश्व दूर संचार दिवस, महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा गंतव्य, डिजिटल बैंकिंग का उपयोग और सावधानी, और साथ ही साथ कुछ ब्यूटी टिप्स और फिल्म संगीत भी होगा।

शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज की बात होगी निरंतरता से सफलता। लघु जानकारी होगी विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, नुब्रा वैली तापघात से बचाव और रोजगार समाचार के साथ साथ होगा क्विज टाइम।

संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसमें चर्चा के विषय होंगे रसायन मुक्त खेती, अच्छी उपज के लिए खेत की अच्छी तैयारी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, मौसम की जानकारी के साथ साथ

अब से कुछ ही देर में यानी 7 बजे कार्यक्रम होगा सुप्रभात। इसमें आप सुनेंगे विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, राजस्थान में पर्यटन और साथ ही साथ कुछ गीत संगीत।

7:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे सिंधी कविता पाठ। कवि होंगे श्री सुरेश हिंदुस्तानी। 8:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 9:30 पर कार्यक्रम होगा मुकुल। 10:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

0: ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है बीकानेर में नींबू वर्गीय फसलों की खेती। वाचक स्वर है श्री अश्विनी व्यास का।
1: किसान भाई राम राम। नींबू वर्गीय फलारी खेती जी की है वह एक चुनौती भरो कार्य है। ईरे बगीचा रे लगाने रे बाद रे मायने संबंधित तकनीक और जानकारी रे अभाव में किसान भाई ने काफी नुकसान उठानो पड़े है। वृक्षां रो फूल आनो, फला सु फल और गलनो, फला में दाग कीट और अन्य समस्याओं से किसान भाइयों ने परेशान होना पड़े तो पौधा लगाते समय भूमि री जांच करार और हो सके तो 4-5 फीट री परिधि में मिट्टी रो परिवर्तन या मिट्टी रो शिवांश खाद री मात्रा में ज़्यादा डालियो जावे। उत्तम गुणवत्ता वाला पौधा ने बगीचे रे बीच में लगायो जावे। नींबू वर्गीय फला में 2 प्रकार रा फल प्रमुख है। एक तो बे जिका खट्टा फल देवे और दूसरा मीठा फल। खट्टे फला में मुख्य रूप से लाइम और लेमन है जबकि मीठे फला में संतरो, मौसमी, मीठा नींबू, ग्रेपफ्रूट, डाब आदि कई किस्म है। संतरो अब गंगानगर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है और सागे सागे बीकानेर और आसपास रे क्षेत्र में भी संतरे रो उत्पादन ई दिना में बढ़ियो है। बीरे सागे नींबू और नींबू रा पेड़ लगाने री विधि जी की है बबी बीकानेर और आसपास रे क्षेत्र में किसान भाई ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। नींबू वर्गीय फला में मुख्य रूप से बर्डिंग और कुछ हद तक ग्राफ्टिंग विधि प्रयोग में लाई जावे। कागजी नींबू रो मुख्य रूप से बीज गुट्टी द्वारा प्रसारित करो जा रहे है। लेमन रे पौधा में पौधा गुट्टी दाबा और कलम द्वारा तैयार किया जावे। नींबू वर्गीय फला में डिक्लाइन री समस्या गंभीर होवे ई वास्तर सही उपयुक्त मूल व्रत रो प्रयोग करना जरूरी है जिके पर बडिंग या ग्राफ्टिंग संतरा और मौसमी द्वारा अच्छी गुणवत्ता रा पौधा तैयार करिया जा सके। बगीचों लगाने रे तरीके री अगर आप बात करा तो बगीचों लगाने वास्तर 5 गुण

0: अपना 5 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि में रेखांकन कर 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर आकार रा गड्ढा तैयार करना है। गड्ढा री खुदाई मई जून में और भराई जून जुलाई में करनी चाहिए। अगर मिट्टी ज़्यादा खराब है तो तड़ावरी मिट्टी 20-25 किलोग्राम गोबर री सड़ी खाद 1 किलोग्राम करंज नीम खड़ी 50-60 ग्राम दीमकनाशी रसायन 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट DAP प्रति गड्ढे दर सु बाग स्थापित करना चाहिए। पौधारी बढ़वार भी इसु उचित होती रहे। पौधा ने जुलाई अगस्त में गड्ढा रे बीचो बीच उबीरी पिंडी रे आकार री जगह बनार और लगाना चाहिए और इरे चारों तरफ थाड़ो बनार पानी देना चाहिए। पौधा लगाते समय और ध्यान रखना है कि बियानी ग्राफ्टिंग या बार्डिंग जोड़ जमीन में सु 10-15 सेंटीमीटर ऊपर रहे। नींबू वर्गीय पौधारी देख रेख, तो नींबू वर्गीय फला में नवजात पौधारी उचित देख रेख आवश्यक है। नए पौधा ने गर्मी रे मौसम में तेज धूप और लू तथा सर्दी रे मौसम में ठंड और पाड़े सु बचानो वास्तर समुचित प्रबंध करनो चाहिए। पौधारी जड़ा रे खन्ने पर्याप्त नमी रहे इरो ध्यान रखने वास्तर समय समय पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए और पलवार बिछानी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण रे वास्तर थालों में समय पर गुड़ाई और पतवार रो प्रयोग अपने करनो लाभ पहुँचावे। वनस्पति अवस्था में पौधा में उचित ढांचो निर्माण ज़्यादा जरूरी है। ई वास्तर उचित काट छाँट भी करनी चाहिए। पौधा ने पर्याप्त मात्रा में पोषण तत्व भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ई वास्तर संतरों और मौसमी रे प्रत्येक पौधे ने 20-30 किलोग्राम गोबर री सड़ी खाद 101.5 किलोग्राम यूरिया 101.5 किलोग्राम सीसुफा और 0.5 से 0.6 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश प्रति साल देने की जरूरत होवे। इरे सागे सागे फल देव नाला पौधा में जिंक सल्फेट और बोरोन भी दियो जानो चाहिए। उर्वरक री अच्छी मात्रा नए कल्ले निकलने रे समय और हल्की मात्रा फल लगने रे बाद देने सु अच्छी उपज मिले। पौधारी वनस्पतिक अवस्था में खाद और उर्वरक रो संतुलित प्रयोग सु बीरी बढ़वार अच्छी होवे। नींबू में भी ई प्रकार सु ही उर्वरक रो व्यवहार करो जानो चाहिए।
1: ये था कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था बीकानेर में नींबू वर्गीय फलों की खेती। वाचक स्वर था श्री अश्विनी व्यास का। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक संबंधेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवमकक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-अधिक-2000तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-अधिक-2000तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु 33 भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्थविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवारणकी संचेतना प्रसारिता। केरलं माहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु उत्तरपूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्टिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 7 बजे है आरंभ होता है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत हमारे लिए बेहतरीन और ऊर्जावान होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कभी भी फ़ोन नहीं देखना चाहिए। हमारी आजकल कुछ आदत बन चुकी है कि हम उठते ही फ़ोन देखते हैं, 10 मिनट तक उसको चलाते हैं, उसके बाद ही हम उठ पाते हैं। तो ये हमारे दिन की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इससे हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है। हमें अपने दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए उठने के बाद व्यायाम और गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। कुछ देर व्यायाम भी करना चाहिए और कुछ देर खुली हवा में हमें गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे हमारे दिमाग तक भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। इससे हमारा जो तनाव होता है उसे हम कम कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके अपने दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है। और फ़ोन को कम से कम सुबह उठने के 1-2 घंटे तक अगर हम ना ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। इससे क्या है कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आँखें बंद करके अपने मन ही मन कुछ ना कुछ गुनगुनाना भी चाहिए, जिससे हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो, चाय की चुस्की हो और साथ ही साथ हमारा मन कुछ इस तरह से गुनगुनाए।

जिंदगी है और लगभग हमारा सारा काम डिजिटल हो गया है, सारे काम हमारे इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को भी सचेत रखना ज़रूरी हो जाता है कि जैसे जैसे समय चल रहा है उसके साथ साथ भी हमें इसी दौड़ में शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन अपनी सुबह की शुरुआत हमें अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन हमारा जो काम है वो इंटरनेट और सूचना के द्वारा हो रहा है, दूरसंचार के द्वारा हो रहा है, तो आजकल हमने देखा है कि हमारा जितना भी काम है सब फ़ोन के माध्यम से होता है और इंटरनेट के माध्यम से होता है, जिसे करने के लिए हमें अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। श्रोताओं, हमने देखा है कि आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत से लोग अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं कि पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसी माध्यम से हम घर बैठे हजारों कमा भी सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। खाली बैठे बैठे दिन भर इंटरनेट चलाने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जितनी भी उपयोगी चीज़ें हैं उनका उपयोग करके हम अपने आप को अच्छा इंसान भी बना सकते हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। आजकल हमने देखा है ना कि कई लोग इंटरनेट पर अपने वीडियोज़ डाल के बहुत से पैसे कमा लेते हैं, तो हम भी उस चीज़ को कर सकते हैं, इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, आज है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। इसे प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, डिजिटल विभाजन को पाटना और राष्ट्रों के विकास में आम जन की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसकी शुरुआत 17 मई 1865 को हुई थी, जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन का पर हस्ताक्षर हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना हुई थी। इसे आधिकारिक तौर पर पहली बार 1969 में मनाया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा और ITU के पूर्ण अधिकार सम्मेलन द्वारा इसे विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। श्रोताओं, इसका असली उद्देश्य यही है कि ग्रामीण और जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ तक सस्ती और आधुनिक संचार तकनीक को पहुँचाना, ताकि वहाँ के लोग भी इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकें और साथ ही साथ आधुनिक इंटरनेट और डिजिटल नवाचारों के महत्व को समझाना, उनको जागरूक करना, वैश्विक स्तर पर दूरसंचार मानकों, सहयोग और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना भी है। श्रोताओं, जब तक हमें जागरूकता नहीं होगी, इसके बारे में हमें पता नहीं होगा, तो उस चीज़ का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को खाली समय में इंटरनेट से जोड़ना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को कैसे आगे और अच्छा बना सकते हैं और किस तरह से अपने जीवन में अच्छा सवेरा ला सकते हैं, अपने जीवन को कैसे उजागर कर सकते हैं, इस पर हम काम कर सकें।

श्रोताओं, हमने बात की थी कि सुबह सुबह हमें फ़ोन नहीं देखना चाहिए, हमें अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में, जो समय चल रहा है, जिसमें हमारी बहुत भागदौड़ भरी

को देते हो तो उससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और इससे कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं आ सकती है। इसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर यदि स्वस्थ होगा तो अपने दिमाग को भी हम स्वस्थ रख सकेंगे और सब काम को कर सकेंगे।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन।

0: पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: श्रोताओं, राजस्थान में पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12% का योगदान करता है। राजाओं की भूमि के नाम से मशहूर राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भव्य किलों, ऐतिहासिक महलों और जीवंत उत्सवों के कारण देश विदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। श्रोताओं, पर्यटन के बहुत से प्रमुख स्तंभ हैं जिसके कारण विदेशी पर्यटक इसके लिए आकर्षित हो जाते हैं, जैसे जयपुर का हवा महल, आमेर का किला, जयपुर का मेहरानगढ़, उदयपुर के लेक पैलेस और जैसलमेर का सोनार किला इसके मुख्य उदाहरण हैं। श्रोताओं, इसी के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक में अजमेर शरीफ दरगाह, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर और बीकानेर का करणी माता मंदिर, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। इसी के साथ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के सम के धोरे, इन रेतीले धोरों में कैमल सफारी और डेजर्ट कैंपिंग और जीप रैली बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के कारण विदेशी पर्यटक इसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य और जैसे सरिस्का, रणथंबोर, मुकुद्रा हिल्स जैसे टाइगर रिजर्व और केवला देव उद्यान भरतपुर पशु पक्षियों के प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। श्रोताओं, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं को भी शुरू किया गया है। इसके लिए राजस्थान होमस्टे योजना बनाई गई है, जिसके तहत ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के तहत इस नई नीति को लागू किया गया है, जिसके तहत घर पर पर्यटकों को ठहराने की मंजूरियों को बेहद सरल बना दिया गया है। इसी के साथ पर्यटन को राजस्थान फिल्म उद्योग के साथ भी जोड़ा गया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को आकर्षित करने के लिए विशेष सब्सिडी और सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ कम प्रसिद्ध जो स्थल हैं उनको भी प्रसिद्ध करने के लिए और उनको सोशल मीडिया से जोड़ दिया गया है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो सड़क मार्ग है उनको व्यवस्थित किया गया है, ताकि वहाँ तक भी पर्यटक पहुँच सके। इसी के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो सके। दूर दराज के जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ तक कनेक्टिविटी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया गया है, और साथ ही साथ हमारी जो विरासत है, जो पुरानी कलाकृतियां हैं, हवेलियां हैं और किले हैं, उनका रखरखाव और उनको व्यवस्थित किया गया है, ताकि हमारी विरासत का संरक्षण भी हो सके और उन्हें लोग पसंद भी कर सकें।

ये था कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है दो कलियां। युगल स्वर है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और धुन बनाई है रवि ने।

लीजिए अब सुनिए मिस्टर नटवरलाल फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से ये गीत। युगल स्वर था लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है क्रांति। युगल स्वर है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम में अंत के अंत में आप सुन रहे थे राम लखन फिल्म से ये गीत। स्वर थे अनुराधा पोटवाल और मनहर उदास के। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और

0: ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाए।

0: और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने

0: पीठ पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने

0: 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई। कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach. Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense.
3: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की

0: and accountability. The editorial warns that unless India reforms how competitive exams are conceived and administered, public trust in merit itself will continue to erode. Dailies have prominently reported the decision of the Netherlands to return 11th century Chola era plates to India. The Tribune, calling it a moment heavy with history and symbolism, writes that the Leiden University announced its decision to return the plates after an official inquiry concluded that they were taken during the Dutch colonial rule without the consent of their rightful custodians. And finally, an elephant has given birth to twin calves at the Corbett Tiger Reserve, reports Hindustan Time. Wildlife experts have described it as a rare event among elephants. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala Temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर और एफएम चैनल 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सवेरे के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सौरभ। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं सिंधी कविता पाठ। कवि होंगे श्री सुरेश हिंदुस्तानी।
3: पेश है इन कुछ कविताओं। पहली कविता है राग रागनी। गढ़ हलन किए मानो चुक जी वयूं सब राग रागनियों। गढ़ हलन किए मानो चुक जी वयूं सब राग रागनियों। कोन रहयो हाणे झरनो वहंदर पानी। कोन रहयो हाणे झरनो वहंदर पानी। पानीदार कोन आए अखियों भी। कोन रहयो हाणे झरनो वहंदर पानी। पानीदार कोन आयन अखियों भी। कोनन किथे भी खेल खिल ठहाका। कोनन किथे भी खिल ठहाका। चुक जी वयूं सब राग रागणियूं। कीअं त धरती सोन जहड़ी पोख ठाहे। कीअं पंहिंजे लजाइण पोखन साईं पोते। कीअं खन खन थी कंगणनि जी चाराई आहे। चुक जी वयूं सब राग रागणियूं। गढ़ हलण किया माण्हू चुक जी वयूं सब राग रागणियूं। ॿी कविता आहे हवा। वायरन वांगुर जागी वेंदी आहे सॼी रात। वायरन वांगुर जागी वेंदी आहे सॼी रात। सुपना ॾिसंदड़ माण्हू खुली अखियुनि जो सच। वायरनि वांगुरु जागी वेंदी आहे सॼी राति। सुपना ॾिसंदड़ माण्हू खुले अखियुनि जो सच सही कोन्हे सघंदा आहिनि। वायरनि वांगुरु वेंदी आहे जागी वेंदी आहे सॼी राति। सुपना ॾिसंदड़ माण्हू खुली अखियुनि जो सच सच कोन्हे सघंदा आहिनि। ॿी कविता आहे आख़िरी कविता। आख़िरी कविता में रहंदो आहे प्रार्थना गीत। आख़िरी कविता में रहंदो आहे प्रार्थना गीत। जेकॾहिं पंहिंजी कविता में हुजे प्रार्थना अरदास त आख़िरी जो ढप छो हुजे। आख़िरी कविता में रहंदो आहे प्रार्थना गीत। जेकॾहिं पहिरीं कविता में हुजे प्रार्थना अरदास त आख़िरी जो ढप छो हुजे। अगली कविता है रसीदी टिकट। मुखे रसीदी टिकट न ठायो मां मोटंदस कोन। मुखे रसीदी टिकट न ठायो मां मोटंदस कोन। इंतजार।

जायो आहे हिन देह में हाणे कुझु कोन्हे। मूंखे रसीदी टिकट न ठाहियो मां मोटंदसि कोन, इंतज़ारु अजायो आहे हिन देह में हाणे कुझु कोन्हे। तव्हां घर वञो मानी खाओ निंड कयो, तव्हां घर वञो मानी खाओ निंड कयो। ॿी कविता आहे भॻिती। कुंड कुड़्छ में तव्हांखे मिले शक्ति, कुंड कुड़्छ में तव्हांखे मिले शल शक्ति, कयो भक्ति मालिक जी मटियो जीअण जा माना। कुंड कुड़्छ में तव्हांखे मिले शक्ति, कयो भक्ति मालिक जी मटियो जीअण जा माना, मटियो जीअण जा माना। ॿी कविता आहे वार। हारियल बादल तू साह पटण आयो हूंदे, तॾहिं त मूं जहिड़े सफ़रगीर जे ॾांहुं ॾिसे बि कोन थो। हारियल बादल तू साह पटण आयो हूंदे, तॾहिं त तूं मूं जहिड़े सफ़रगीरी जे ॾांहुं ॾिसे बि कोन थो। छा चवां तोखे, भले साह पटण जे सदिके ई तूं मिलणु त आहीं मूं सां। छा चवां तोखे, भले साह पटण जे सदिके तूं मिलणु त आहीं मूं सां। मां हिन में ख़ुशि आहियां तुंहिंजो थोराए थो शुक्रिया। ॿी कविता आहे चौधारी। मुंहिंजे चौधारे माण्हुनि जी आहे भीड़, भीड़ में आहियां अकेलो। मुंहिंजे चौधारी माण्हुनि जी आहे भीड़, भीड़ में आहियां अकेलो। छाकाणि अकेलो ई वञिणो आहे सफ़र ते अकेलो। मुंहिंजे चौधारे माण्हुनि जी आहे भीड़, भीड़ में आहियां अकेलो। छाकाणि अकेलो ई वञिणो आहे सफ़र ते। ॿी कविता आहे नाले सां विछड़ियल। हू ईंदो आहे नाले सां विछड़ियल दुनिया में, हू ईंदो आहे नाले सां विछड़ियल दुनिया में, ॾेई वेंदो आहे नालो दुनिया खे। हू ईंदो आहे नाले सां विछड़ियल दुनिया में, ॾेई वेंदो आहे नालो दुनिया खे। माण्हू कोन सुञाणंदा आहिनि बदनामी छा थींदी, नालो हुन जो थोरी दुनिया जो ॾिनल आहे। माण्हू कोन सुञाणंदा आहिनि बदनामी छो थींदी, नालो हुन जो थोरे ई दुनिया जो ॾिनल आहे। ॿी कविता आहे खून। न झेड़ो न फसाद थियो, हिकु कातिल वरी बि खून करे छॾियो। न झेड़ो न फसाद थियो, हिकु कातिल वरी बि खून करे छॾियो। अरमाननि जो, इंसानियत जो, सच्चाई जो, मानवता जो खून। न छेड़ो न फसाद थियो, हिकु कातिल वरी बि खून करे छॾियो। अरमाननि जो, इंसानियत जो, सच्चाई जो, मानवता जो। ॿी कविता आहे नाले सां विछड़ियल ॿ। शहरनि जा बि के नाला थींदा आहिनि, नाला त थींदा आहिनि माण्हुनि जा। शहरनि जा बि के नाला थींदा आहिनि, नाला त थींदा आहिनि माण्हुनि जा। शहर बि माण्हूअ जा ग़ुलाम थींदा आहिनि, ग़ुलाम रुगो ग़ुलाम। शहरनि जा बि के नाला थींदा आहिनि, नाला त थींदा आहिनि माण्हुनि जा। शहर बि माण्हुनि जा ग़ुलाम थींदा आहिनि, ग़ुलाम रुगो ग़ुलाम। ऐं ग़ुलाम नाले सां विछड़ियल थींदा आहिनि, नाले सां विछड़ियल थींदा आहिनि ग़ुलामनि जा नाला कोन थींदा आहिनि। ग़ुलाम नाले सां विछड़ियल थींदा आहिनि, ग़ुलामनि जा नाला कोन थींदा आहिनि। नाले सां विछड़ियल टियों। मिले गुमनाम खे गुमनाम जा गुमनाम भाईवार, गुमनाम परिवार। मिले गुमनाम खे गुमनाम जा गुमनाम भाईवार, गुमनाम परिवार। एड्रेस फाइव स्टार होटल जे पुठियां मिलियसि टपाल में ख़त, हुन ख़त छकाए छॾियो सभिनि खे। मिले गुमनाम खे गुमनाम जा गुमनाम भाईवार, गुमनाम परिवार। एड्रेस फाइव स्टार होटल जे पुठियां मिलियसि टपाल में ख़त, हुन ख़त ॾकाए छॾियो सभिनि खे। हुन में लिखियलु हुयो हाउस टैक्स फलाणा तारीख़ ताईं भरे छॾियो, न त खाली कयो फुटपाथ। मिले गुमनाम गुमनाम जा

0: परिवार गुमनाम परिवार एड्रेस फाइव स्टार होटल जे पुठियां मिलियस टपाल में ख़त हुन ख़त डकाए छॾियो सभिनि खे हुन में लिखियलु हुयो हाउस टैक्स फलाणा तारीख़ ताईं भरे छॾियो न त खाली कयो फुटपाथ। ॿी कविता आहे कातिल जो नालो पुछियई मजिस्ट्रेट वकील ॿुधायो कत्ल कंहिंजो थियो। कातिल जो नालो पुछियई मजिस्ट्रेट वकील ॿुधायो कत्ल कंहिंजो थियो। वकील कोन ॿुधाए सघियो मजिस्ट्रेट बिना नाले कोन करे सघंदो आहे सजा। कातिल जो नालो पुछियई मजिस्ट्रेट वकील ॿुधायो कत्ल कंहिंजो थियो। वकील कोन ॿुधाए सघियो मजिस्ट्रेट बिना नाले कोन करे छॾियो आहे सजा। छॾ सॼाई मरण वारो रोज़ अॼु बि रोज़ मरंदो आहे। मरण वारो रोज़ अॼु बि रोज़ मरंदो आहे।
1: ये था कार्यक्रम सौरभ। इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे सिंधी कविता पाठ। कवि थे श्री सुरेश हिंदुस्तानी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

ये था कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हेग में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के ये कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हो गया है। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 183 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। बगरू के ठिकरिया गांव में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

ने भाग लिया। उन्होंने वीसी के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। समारोह में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास का रोड मैप बनाकर पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए MOU किए गए हैं। वहीं कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह में जाने के लिए प्रेरक पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठिकरिया गांव तक EV बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित EV बस का उपयोग कर आमजन को ग्रीन मोबिलिटी का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। CBI के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था।

0: अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को कल पुणे की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में इससे पहले कई नवाचार किए गए हैं जिससे सदन की अनूठी पहचान बनी है। एक रिपोर्ट।
1: नए राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण के बाद भवन को गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ ही यहां कई नवाचार किए गए हैं। इनमें डिजिटल और कागज रहित व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, जन दर्शन कार्यक्रम, शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और औषधीय वाटिका शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी, केंद्रीय कक्ष की परिकल्पना और संविधान क्लब को विचार विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कई कार्य किए गए हैं। इनसे राजस्थान विधानसभा की देश भर में अनूठी पहचान बनी है। ये नवाचार जनता और युवाओं को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से रूबरू कराते हैं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी जागरूक करते हैं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रवासी पाली वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जिले में आओ गांव चले अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने अभियान के लिए जिला स्तर पर एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास जैसे जनोपयोगी कार्यों में प्रवासियों से सहयोग प्राप्त करना है। इच्छुक प्रवासी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सहयोग कर सकते हैं। जैसलमेर में आम जन तक पौधों की जानकारी और उपलब्धता के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पंच गौरव अभियान के तहत एक डिजिटल कियोस्क, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है जो लोगों को पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही उन्हें डिजिटल तरीके से पौधे खरीदने की सुविधा भी देगा। ये डिजिटल डिस्प्ले ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वन विभाग के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने ये जानकारी दी।
2: करीब 24 जो प्लांट स्पीशीज है उनके बारे में एक इंटरैक्टिव वे में हम इस कियोस्क के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। जो ये कियोस्क है हम कलेक्टेड या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां लोग ज्यादा इंटरैक्ट कर पाए। तो इसके माध्यम से जो जितने भी पौधे हैं 24 पौधे उनके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, उसके यूजेस क्या है, उसे प्लांटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सरी का लोकेशन वगैरह भी इसमें इस कियोस्क के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहां से पौधे फिजिकली लेना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है हम यहां पे सॉफ्टवेयर ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि लोग इसमें स्कैन करके लोग अपने SSID से परचेज कर पाए इस कियोस्क के माध्यम से।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहली जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी

0: और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत।

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर और FM चैनल 101.6 मेगा हर्ट्स पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश करेंगी डॉक्टर स्वर्ण रेखा।

बच्चों जय हिंद। कैसे हो? जिंदगी में हम बहुत कुछ सोचते हैं। हमारी छुट्टियां हो गई, मम्मी पापा के साथ में हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ, वेकेशंस की तैयारी करनी है, क्या करना है समर कैंप में, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम सोचते रहते हैं ना कि हमारा संडे कैसा जाना चाहिए। क्योंकि आज संडे है और आज आपसे मिल रही है आपकी दीदी स्वरण रेखा। आपकी दीदी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सोची आज आपके लिए, पता है क्या है? कोई गैस करेगा? अरे भाई, आंखें मूंदते मूंदते छोटे चुन्नू मुन्नू तो उठ रहे हैं, लेकिन बड़े वालों का क्या? अभी भी आंखें बंद किए तकिया ऊपर रख रहे हैं। हाँ, प्रोग्राम तो चलेगा, कानों में आएगा भी, क्योंकि आप जब सुनते हैं ना अपनी मन की बातें, जो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे अपनों से डिस्कस करना चाहते हैं, और हम प्लान करते हैं अपनी छुट्टियों को। गर्मियों की छुट्टियां हैं और समर वेकेशंस तो हमारे लिए खुशियों का खजाना होती है। बिसाइड कि हम बीमार नहीं पड़ें, ज़िद नहीं करें और गलत नहीं करें, तो हम क्या हैं? यही तो बात है ना, हमारा होना हमारे परिवार के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बिलोंगिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे मम्मी पापा हमें कोई चीज़ समझाते हैं, उन्हें समझना चाहिए। आप साइकिल पे शाम को घूमने निकलते हैं तो रोड के जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है कि पापा हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। जी हाँ, हेड ऑफ़ द फैमिली, जिनसे हम सबसे ज़्यादा ज़िद कर लेते हैं। और ये छोटी छोटी गुड़िया रानी है ना, पापा की परियां, भाई मजाक पे तो सभी यही कहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर बच्चा अपने मम्मी पापा के बहुत करीब होता है। तो चलिए ना, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए हमारा परिवार जो बनाते हैं, और उसमें होते हैं दादा दादी भी, जो हमारे उनसे भी बड़े, यानी सुपर हेड ऑफ़ द फैमिली। तो हमारी फैमिली क्या है? एक सुपर फैमिली है। और इस फैमिली को और खुश कैसे रखें? क्योंकि हमें अपने मम्मी पापा की हर बात को मानना है। तो चलो, सबसे पहले तो जल्दी जल्दी उठ जाओ, ब्रश कर लो, आपकी दीदी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आई है। मिलते हैं आपके लिए एक छोटे से गाने के साथ, क्योंकि गाना मूड को रिफ्रेश करता है।

क्या हुआ, बच्चे उठ लिए? हाँ उठना तो था भाई, सभी को अपनी दीदी का जो इंतजार है। और हाँ, सबसे पहले अगर ब्रश कर लिया है तो कुछ ना कुछ गुनगुना पानी या वो ले लो, ताकि आप फ्रेशन अप हो जाएंगे। और हाँ भाई, सीधा किचन की तरफ नहीं जाना है। हाँ माँ बना तो बहुत कुछ रही है किचन में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भागते दौड़ते जाते हैं किचन में और भूख लगी है करके कुछ भी खा लेते हैं। सुबह सुबह कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं खाना होता, हमें हेल्दी रहना है भाई, वी आर द स्ट्रांग। और हमें अपने आप को कैसे सही रखना है, बताओ बताओ भाई। देखो गर्मियों की छुट्टियां हैं और हमें करना क्या है, क्योंकि ये प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो उससे पहले हल्का फुल्का जो नाश्ता माँ ने बनाया है, उस नाश्ते को ले लो, ताकि हम आगे की प्लानिंग करें। और प्लानिंग कैसे, आपकी अपनी दीदी करवाएगी ना अभी आपको। प्लानिंग का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है आपको पता है? हम बच्चे ही होते हैं कि हम क्या चीज़ चाहते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या करना है, नानी के घर जाना है, दादी के घर जाना है, बड़ों से मिलना है, और हाँ पेड़ों पे भी चढ़ना है। क्योंकि जिन बच्चों के परिवार बाहर रहते हैं, दादा दादी बाहर रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे बगीचा तो होता ही है, तो पेड़ों पर चढ़ने का आनंद जिसको कह सकते हैं वो वहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर गर्मियों की छुट्टियों में हम वेकेशंस प्लान करते हैं, तो हमें कौन सी जगह जाना है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, या ऐसी जगह जो हमें वास्तव में पीसफुल नेचर के करीब लेके जाए, हम कुछ नई चीज़ें सीख कर आएँ। तो उसके लिए आपको पता है कहाँ जाएँ, हमें बायोलॉजिकल जो रिजर्व्स होते हैं, बायो रिजर्व्स जिसको कहते हैं, वहाँ जाना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या होता है, छोटे बच्चों को तितलियाँ बहुत पसंद है, हम वहाँ पे जाके तितलियाँ देखते हैं। बहुत सी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत अलग अलग तरह की बर्ड्स मिलती हैं वहाँ पे। और हाँ आपको पता है हमारा बायो रिजर्व कहाँ पे है, पंचमढ़ी में है। आप वहाँ का भी प्लान करवा सकते हो पापा को बोलकर, क्योंकि हमारे पापा मम्मा हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ें प्लान करेंगे। और क्या करते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट, सर्दियों में भी टाइम बिगड़ता है, गर्मियों में भी टाइम बिगड़ता है, और हम क्या करते हैं, सोने में आलस में सब चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। तो जस्ट प्लान अ लिटिल थिंग्स हमें

हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल उठना है, योगा है, एक्सरसाइजेज है, आउटडोर गेम्स हैं, ये मॉर्निंग के अंदर हमें अपने स्केड्यूल में रखना है। फिर जो छोटे बच्चे हैं, ये उठते हैं, जिद करते हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पीना, मुझे सोना है, ब्रश भी टाइम पे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करना होता। हमें क्या करना है? सुबह उठना है, ब्रश करना है, हेल्दी रहना है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो पेट्स भी हैं, तो पेट को घुमाने भी जा सकते हैं। और साथ में हल्का खाना खाएंगे, हल्दा जो हेल्दी भोजन लेंगे, उससे क्या होगा? हमारी टीथ एंड बोन स्ट्रांग होती है। मल्टीपर्पज़ टास्किंग जिसको बोलते हैं ना, वो सब करना है हमें। और गर्मियों की छुट्टियों को हमारी एक्साइटेड बनाना है। अब इसमें सेकेंड थिंग क्या है? द वेकेशन प्लानिंग। कहाँ जा रहे हो तो आपका अपना छोटा सा एक लगेज पैक होना चाहिए। छोटे बच्चों का तो मम्मा कर देती है, लेकिन जो टीनेज बच्चे हैं या जो बीच के बच्चे हैं, मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने भाई बहन, तो उनके लिए खुद की पैकिंग करना भी उनको आना चाहिए। एक डायरी ज़रूर रखें अपने पास में, जिसमें आप अपने वेकेशंस को थोड़ा थोड़ा करके अपनी भाषा में लिखिए। तो उसे कहते हैं हमारी ट्रैवल ब्लॉगिंग। हम लेटेस्ट अपडेट के साथ चल रहे हैं। वहाँ नो वीडियो गेम, नो मोबाइल्स, नथिंग। वहाँ पे आपको वेकेशन को एंजॉय करना है। यही होता है एंजॉयमेंट कि कैसे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वेकेशन पे जा रहे हैं, कहीं पापा नाराज़ नहीं हो जाए कि बदमाशियाँ नहीं, ट्रेन में बदमाशी नहीं, स्टेशन पे बदमाशी नहीं, या जिस चीज़ से भी जा रहे हैं, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, तो वहाँ पे चीज़ों को नहीं छेड़ना, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें कोई नुकसान होने का डर रहता है। और पापा को जब गुस्सा आता है तो बाप रे बाप, पता है ना वो कैसे देखते हैं, मान भी जाते हैं। चलो मनाते हैं पहले पापा को, क्योंकि वेकेशंस पे जो जाना है

पापा का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, और जब पापा को गुस्सा आ जाता है ना, उसके बाद में मनाने का एक ही तरीका है, प्यारी सी कविता सुना दो। चलो अब मैं सुनाती हूँ आपको एक प्यारी सी कविता, क्योंकि हमें जाना तो है ही, मौसम बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तो कैसे उसके अंदर हमारे वेकेशन को भी कलरफुल करना है। आपकी दीदी वही कविता लेकर आई है, ऋतुओं के संग संग। ऋतुओं के संग संग मौसम बदले,

ऋतुओं के संग संग मौसम बदले, बदल गया धरा पे जीवन आधार। मानव तेरी विलासिता चाहत में उजड़ रहा है नित प्रकृति का श्रृंगार। प्रकृति का श्रृंगार खराब करना मतलब जब हम बहुत ज़्यादा दोहन करने लग जाते हैं, नेचर को खराब करते हैं। तो उसमें सबसे पहली ऋतु कौन सी आती है? अब आई है ग्रीष्म ऋतु। सूरज तपता, आग उगलता, धरती का हर कोना जलता, लू के थपेड़े तन को झुलसाए, गन्ने का रस और आइसक्रीम भाए। जैसे अभी। फिर आती है बारिश की। काले बादलों की घटा छा गई, बादल गरजे, रिमझिम फुहार आई, मोर भी अपने पंख फैलाए, कागज की नाव पानी में तैराए। हमने भी तैराई, आपने भी तैराई, है ना? फिर आई पतझड़ की। पीले पत्ते झड़ने लगे धीरे धीरे, मौसम में धुली ठंडी हवाओं के घेरे, फसलों की कटाई का समय है आया, प्रकृति ने जैसे कोई नया रंग सजाया। इस समय खेतों में जो फसलें होती हैं ना, उनकी कटाई होती है। अब आती है शीत ऋतु। कंप कंपाती ठंड और कोहरे की चादर, रजाई में दुबके बैठे लोग घर के अंदर, सूरज की धूप लगती है कितनी सुहानी, मूंगफली और चाय की चुस्कियां हैं मस्तानी, पर हमारे लिए तो मम्मी बनाती है गर्मा गर्म केसर वाला दूध, है ना? फिर आती है वसंत ऋतु। अब वसंत के लिए क्या कहते हैं? फूल खिले महकी बगिया सारी, ऋतुओं का राजा बसंत है सबसे न्यारा, कोयल गाए मीठे गीत मल्हार, खुशियों से भर जाए जीवन संसार। तो जब खुशियों से जीवन संसार भर जाता है तो कुछ चीज़ें और भी खुशनुमा हो जाती हैं। जैसे हमारे लिए एक और प्यारा सा गीत, ताकि आप भी ये कविताएं अपने मन में रखें।

कविता तो हमने सुनी, तो चलो कहानी का सेक्शन भी आ ही गया। वैसे कहानी हम सुनते हैं रात को, लेकिन क्या करें, अपना जो प्रोग्राम आता है ना, ये दिन में आता है। तो छोटे बच्चों को तो कहानी कभी भी सुनाओ, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ये कहानी है बच्चों के लिए कि लालची मित्र क्या होता है। किसी गाँव में दो मित्र रहा करते थे। एक बार किसी दूसरी जगह जाकर धन कमाने की सोची। दोनों रास्ते में निकल पड़े कि भाई चलो चल।

छुपते हैं, धन कमा के लाएंगे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें एक भालू आता दिखाई दिया। अब दोनों की तो सिट्टी पिट्टी गुम, डर गए। एक को पेड़ पे चढ़ना आता था और एक को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता था। तो जो पहला वाला मित्र था ना, वो भाग के पेड़ पे चढ़ गया भालू को देखते, दूसरा नीचे रह गया। पर अब जब भालू पास में आने लगा तो छोटे वाले को तो कुछ समझ आया नहीं कि भाई अब किया क्या जाए, क्योंकि पेड़ पे तो चढ़ नहीं सकता। उसने क्या किया, सांस रोक के ज़मीन पर लेट गया और अपनी ऐसे अपनी सांस को रोक लिया कि जैसे उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, बिल्कुल मृत अवस्था वाला। भालू उसके पास आया, धीरे धीरे उसको सूंघा। उसको लगा कि भाई ये तो निर्जीव है, इसमें तो जान ही नहीं है, तो मैं मरे को क्या खाऊंगा, क्योंकि भालू कभी मरा जानवर नहीं खाता। अब भालू उसकी आंखों से जब चला गया, दूर होता दिख रहा था, तब वह उठकर बैठा और बड़ी गहरी सांस ली, जान में जान आई। पर उसको एक बात का बड़ा दुख था कि भाई उसका दोस्त उसको छोड़कर चला गया। तो उसने भालू को जब पास में आके वो उसको सूंघ रहा था ना, तो दूसरे वाला मित्र जो ऊपर से देख रहा था वो नीचे आया, भागता हुआ उसको पूछता है कि बताओ भालू ने क्या कहा तुम्हारे कान में। उसने बोला कि कान में भालू ने मुझे ये कहा कि गलती मानो अपनी, ऐसा मित्र अपने साथ में मत रखो जो मित्र तुम्हारा मुसीबत में साथ छोड़ दे। बात तो सही कह कर गया। इससे जो वो मित्र था बड़ा लज्जित हुआ। इससे पता क्या चलता है कि जो हमारा सही मित्र होगा, सही फ्रेंड होगा, वो हमें कभी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ेगा, और जिसने छोड़ दिया वो हमारा दोस्त नहीं। तो अपने अच्छे दोस्तों को अपने साथ रखिए और अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें कीजिए, जैसे कि सुनो ना प्यारा सा म्यूज़िक।

इस तरह उस तरह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारी बातें पीछे नहीं रह जाए, क्योंकि आज रोचक जानकारी में आपके लिए जिसको मैं लेकर आई हूँ ना, बहुत खास एनिमल है। आपने देखा भी है, हमारे रेगिस्तान का

जी हाँ, इसे हमारा राज्य पशु भी कहा जाता है। पहचान तो गए होगे, कैमल, ऊंट कहते हैं ना। लेकिन आपको पता है इसकी मुख्य जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है? इसका कूबड़, जिसे हम हम्प कहते हैं। इस कूबड़ के अंदर ना एक फैट होता है जो जमा करता है, और इसके अंदर वो पानी को स्टोर करने में मदद करता है, और इससे वो उसको एनर्जी देता है। क्योंकि रेगिस्तान का जहाज है, इसको डेजर्ट में चलना है, तो इसको एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। दूसरा, ये पानी बहुत पीता है, और पीता एक ही समय पे है, 150 लीटर, लेकिन कई दिनों तक ये प्यासा रह सकता है। हमें तो बड़ी जल्दी गला सूखने लग जाता है। फिर आती है कि रेगिस्तान के साथ में चलने के लिए इसके अंदर एडेप्टेबिलिटी क्या है। इसके पैर ना गद्देदार होते हैं, चौड़े होते हैं, जो गर्म रेत पर आसानी से चल पाते हैं, धंसते नहीं हैं। नहीं तो हमारे पैर अगर हमने गर्म रेत पे रखे तो वहाँ तल जाएंगे, नीचे से सिक जाएंगे पापड़ की तरह। और इसकी पलकें लंबी होती हैं, कानों पे बाल होते हैं। क्यों? ताकि आंधियाँ जब रेत की उड़ती हैं ना, तो इनको मिट्टी नहीं लगती। अब आपने सोचा है कि इसकी कितनी सारी प्रजातियाँ हो सकती हैं? बताओ तो। एक कूबड़ वाला होता है, उसे अरेबियन कैमल बोलते हैं। दो कूबड़ वाला भी कैमल होता है, जो भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में केवल एक कूबड़ वाले मिलते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इसकी सवारी। जब ये बैठता है ना, तो आगे पीछे मटकते मटकते बैठता है। इसीलिए कहावत क्या बनी है? ऊंट 100 करवट बैठता है। तो याद रहेगी आपको ये रोचक जानकारी? रहेगी इसलिए क्योंकि एक और बहुत खास बात है। जब हम बॉर्डर पे होते हैं, तो हमारे BSF के जवान के पास में ऊंट ही होता है, तो ये हमारी सेना की रक्षा में हमारे साथ में मदद करता है, और हमारे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा एनिमल है, जो पूरे हमारे BSF की फोर्सेस के साथ में, जहाँ बॉर्डर लाइंस हैं वहाँ पे ये पोस्टेड है। इसकी अपनी एक कैमल रेजिमेंट भी है। तभी तो कहते हैं कि मिट्टी की खुशबू के साथ में एक मिट्टी और होती है, वो है देशभक्ति की। तो ये हमारे कैमल के लिए है।

इसी के साथ ही क्योंकि कार्यक्रम का समय भी हो चुका है, याद रखना ये चीज है कि रोचक जानकारी में ऊंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और हाँ, जिद नहीं, गर्मियों में बाहर नहीं जाना और सिर ढक के रखना, खूब पानी पीना। इसी के साथ ही आपकी दीदी आपसे फिर से दोबारा मिलेगी अगले संडे को। वेट करना मेरा बच्चों। जय हिंद।

ये था कार्यक्रम मुकुल। इसे आज आपके लिए पेश कर रही थी डॉक्टर स्वर्ण रेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम में पहला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है बागी 2, स्वर आतिफ असलम का है।

अभी आप सुन रहे थे एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह को। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। स्वर अखिल सचदेवा और मनशील गुलजार का है।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
3: आरबीआई कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे। वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर दे

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अभी आपने मोहित चौहान और नेहा बसीन की आवाज़ में फैशन फिल्म का गीत सुना। इस गीत को लिखा था इरफान सिद्दीकी ने। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में फैनी खान फिल्म का गीत। युगल सर है

प्रोग्राम का अगला गीत आशिकी 2 फिल्म से है, स्वर है श्रेया घोषाल का, गीत को लिखा है संदीप नाथ ने।

0: शब्दी हो गई बल्ले बल्ले।
1: प्रोग्राम में अब आप सुनेंगे एक विलियन फिल्म का गीत, स्वर है अंकित तिवारी का।

मिडी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे

अभी आपने हिना फिल्म का गीत सुना। स्वर था सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर और साथियों का। गीत और संगीत रविंद्र जैन का। इस गीत को सुनना चाहते थे सुराणा मोहल्ला बीकानेर से कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमल लबाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दम्माणी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म एक दूजे के लिए से है। स्वर है अनूप जलोटा और लता मंगेशकर का। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहते हैं चुनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज नदीम, नदीम सादाब, एस जाकिर हुसैन बाबू।

कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे पत्थर के सनम फिल्म का गीत, स्वर है मुकेश का। मजरू सुल्तानपुरी की लिखी इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं बल्लभ गार्डन बीकानेर से LC शहजादा, कमला देवी पंवार, लालचंद पंवार और अरुणा रानी पंवार। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर से आनंद आचार्य, रेखा आचार्य, रघु आचार्य, राजेश्वरी आचार्य और उनके परिवार के लोगों ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अपनापन फिल्म का एक गीत सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत को सुनना चाहते थे बल्लभ गार्डन बीकानेर से LC शहजादा, कमला देवी पंवार, लालचंद पंवार और अरुणा रानी पंवार। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी कोटगेट बीकानेर से ओंकार चंद सरपटा, संपत ताराचंद सरपटा और विशाल सनी सरपटा ने। लीजिए अब सुनिए आशा भोंसले की आवाज़ में इजाजत फिल्म का गीत। गीत के बोल गुलजार के हैं, संगीत RD बर्मन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, गीता रानी, सीता रानी, मूलचंद सोनगरा, प्रथम राज, हंस राज, मनोहर लाल सोनगरा, मुकेश आकाश सोनगरा और मिस्त्री सीताराम पंवार।

अभी आपने शोर फिल्म का ये गीत सुना। स्वर था मुकेश और लता मंगेशकर का। गीत के बोल संतोष आनंद ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गीत को सुनना चाहते थे पाबूबारी बीकानेर से लालचंद जैदिया, सुधा जैदिया, कविता जैदिया और जितेंद्र जैदिया। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर से मोटूलाल हर्ष, अरुणा देवी हर्ष, चंद्रशेखर हर्ष, महामाया हर्ष, कैलाश हर्ष, टीना हर्ष, आलोक हर्ष और उनके परिवार के लोगों ने। लीजिए अब सुनिए नाराज फिल्म का गीत। स्वर है कुमार शानू का। गीत के बोल कातिल शफई के हैं, संगीत अनु मल्लिक का। इस गीत को सुनना चाहते हैं जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, श्रीमती संतोष शाही और गौरव शाही। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बीकानेर से मुकेश श्योता, हरीश श्योता, पिंकी श्योता और राकेश श्योता।

कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत। स्वर है मुकेश और शारदा का। गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं, संगीत शंकर जयकिशन का। इस गीत को सुनना चाहते हैं लालगढ़ बीकानेर से असगर अली पंजाबगीर, मोहम्मद रज्जाक पंजाबगीर, अब्दुल सत्तार, बेबी मुमताज, निसार अली, खातून बेगम और जैतून बेगम। इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है बारागवाड़ का चौक बीकानेर से ललित छंगाणी, पवन पुरोहित, भगवान दास छंगाणी, मग्नेश्वर ओझा, दुर्गा दास छंगाणी, शांतिलाल ओझा और उनके दोस्तों ने। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत।

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म में मुकेश और शारदा के गाए इस गीत के साथ ही फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी है, नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग

0: पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जैनिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:05 हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सिंधी कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे दिन में 12:10 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर। इसमें आज आप निरंतरता से सफलता विषय पर आज की बात सुनेंगे, साथ ही नुब्रा वैली और तापघात से बचाव विषय पर भी जानकारी दी जाएगी।

जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी शाम 6:40 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर के अंदर से प्रसारित होगा। शाम 7 श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। इसमें आज आप रसायन मुक्त खेती पर चर्चा सुनेंगे, साथ ही अच्छी उपज के लिए खेत की अच्छी तैयारी और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विषय पर भी जानकारी दी जाएगी। रात्रि 10 श्रोता सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:45 पर श्रोता सुन सकेंगे सुगम संगीत। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 8 और रात्रि 9:15 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार विषय पर फिल्म संगीत। ये थी हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 12:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

0: कुछ बैतू उदाय वाली हैं। इसको
1: अरे वाह, उदायो।
0: बेत आए मिंजी अमर।
1: अरे वाह, रिसेंटली अंजर मदर्स डे वियो आए ऐं तां के मदर्स डे ते हिकड़ी बैत भी बुधायो पिया। वेरी गुड।
0: जी मुखे कैसे खीर पियारो, प्यार मजा ते गोद विहारियो, खुश थी हर हर मूड निहारियो, मिंजी अमड़ मिंजी अमड़। निंड फिटी मो जडे थे पी, कहें थे तुम्हारो लोली दे, छदे न मुखे केडा वई, मिंजी अमड़ मिंजी अमड़। पंध कंदे जे धिको खादम, कै खणे थे छाती लातम, प्यार मंझा ते भाकुर पातम, मिंजी अमड़ मिंजी अमड़। वदी जडे मां वडो थींदस, सुख सवे मां तोखे डींदस, तोते पंहिंजो साह छॾींदस, मिंजी अमड़ मिंजी अमड़।
1: वाह, तव्हांजा अमर जे प्रति जेके पंहिंजा वीचार आहिनि, उद्गार आहिनि, उहे त जाम सुठा आहिनि बेटा। ऐं हाणे इन जे अलावा तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदा?
0: जो खीर पिए सो वीर थिए, दंद जोर बथन सुठा सुहिणा लॻनि, अखियूं जोत वधे ॾाढी सूंह थिए, वठे जोर बदन लिंग चुस्त थियनि, खीर सफ़ा सुठो वाह ॾाढो मिठो, बारो अचो पियो भरे खीर वटियूं, दे खीर अमा पी पढ़नि वञा।
1: अरे वाह, वेरी गुड। खीर ते बि जाम सुठी तव्हांखे बैत ईंदी आहे बेटा। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे की सुभाणे छा आहे?
0: जी सुभाणे इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे आहे,
1: अरे वाह, उन ॾींहुं तव्हां छा कंदा?
0: त हुन ॾींहुं मां सुभाणे पंहिंजे परिवार सां गॾु, पंहिंजे भाउ भेणनि सां गॾु म्यूज़ियम वेंदसि, ऐं ॾाढियूं यूनिक यूनिक शयूं ॾिसंदसि, जीअं असांखे इतिहास जे बारे में ॾाढो कुझु हुते पतो पवंदो, त असां सभई हुते वञी करे ॾाढो मज़ो कंदासीं।
1: अरे वाह, ऐं इन ई बहाने तव्हां जेकी असांजी देश जी विरासत आहे उन्हनि सां बि रूबरू थींदा ऐं तव्हांखे ॼाण मिलंदी केॾी भव्य असांजी विरासत आहे ऐं जेके यूनिक शयूं आहिनि जेके म्यूज़ियम में रखबियूं आहिनि उहो बि ॾिसी करे। छो त मोकलूं हलनि पियूं तव्हांजूं, है न, छुटियूं हलनि पियूं त मज़ो माणो पिया। ऐं तव्हां छुटियुनि में ॿियो किथे किथे वेंदा बेटा?
0: मां छुटियुनि में पंहिंजे नानाणे वेंदसि, ऐं हुतां पोइ मां ॾाढियूं सारियूं जॻहियूं ते घुमंदसि, जीअं वाटर पार्क थी आहे, अम्यूज़मेंट पार्क थी आहे,
1: अरे
0: ऐं
1: वाह,
0: जीअं हुन में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे भाउ भेण सां गॾु वञण में।
1: तव्हां पंहिंजी छुटियुनि जो पूरो सदुपयोग कंदा ऐं पंहिंजी फैमिली खे पूरो टाइम ॾींदा ऐं एंजॉय कंदा। की हर साल तव्हांखे एक्साइटमेंट हूंदी की भई नानी जे घर वेंदसि ऐं मज़ो कंदसि सभिनि भाउरनि भेनरुनि सां गॾु, सौटनि सां गॾु, है न?
0: जी
1: हा, ऐं ॿियो कुझु बि तव्हांखे सिंधी में कोई गीत अचे थो, कोई पहाको अचे थो या कोई पंजड़ो अचे थो लाल साईं जो, त ज़रूरु ॿुधायो असांखे।
0: जी मूंखे हिकु लोक गीत थो अचे, ॿुधायां।
1: हा बिल्कुलु ॿुधायो।
0: जीअ मुंहिंजी सिंध माता घुरिया पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां, अबाणे वतन तां सिंध जे चमन तां, अबाणे वतन तां सिंध जे चमन तां। ओ जीए।

0: वरतासीं नंढड़े नंढड़े ॿारनि सां चर्चा कंदासीं आलमी दूरसंचार ऐं सूचना समाज दिवस ते ऐं आलमी म्यूज़ियम ॾिहाड़े ते ऐं मज़ो माणींदासीं बाल गीतनि जो त अचो साथियो सभिनी खां पहिरीं असां फोन जे ज़रिए ॻाल्हायूं था वंदना सां
1: वंदना अॼु तव्हां असांखे छा ॿुधाईंदा
2: मां तव्हांखे अॼु

0: बारो हिंजर तमा मजो माने रहा हुआ ढूलन रही जो गातल इन्हें बाल गीत जो
1: साथियों तमा असान्या सिंधी प्रोग्राम बुधनता चायो पर कदें तमा दुकान ते आयो कदें ऑफिस में कदें मार्केट निकता आयो त कदें सफर प्या कयो त रेडियो सेट के मिस कंदा आयो हन पर हाणी सिंधी प्रोग्राम बुधण जी राह में ईंदड़ सब मुश्किलूं आसान करे रहयो आहे तवां जे हथ में झलियल ही नंढड़ो सो जादुई मोबाइल हा यो मोबाइल तवां के असाया सिंधी प्रोग्राम बुधाए सगंदो दुनिया जे कहें भी कुंड में दुबई में हुजो स्पेन में अमेरिका में या अफ्रीका में हर जगह ते तवां बुधी सगंदा पहंजा प्यारा सिंधी प्रोग्राम तवां के करनो बस एत्रो ही आहे त जिए तवां ब्या एप्स डाउनलोड कंदा आयो बस इए ही प्ले स्टोर ते वणो ए सर्च वारी जगह ते टाइप कयो एन ई डब्ल्यू एस ओ एन ए आई आर यानी न्यूज़ ऑन एयर ए उन्हें के इंस्टॉल कयो इंस्टॉल कंदे ही तवां के मोबाइल जी स्क्रीन ते थोरो ही हेठ प्रसार भारती जो लोगो नजर इंदव ए तवां के उन्हें के ओपन करनो आहे ओपन कंदा त सामू पहरी खाबे पासे लाइव रेडियो ए साजे पासे लिसन न्यूज लिखल नजर इंदव तवां लाइव रेडियो के क्लिक कंदा त उते एक लंबी फहरिस्त नजर इंदव भारत जे जुदा जुदा आकाशवाणी केंद्रन जी तवां के उते ही सबनी खां मथे सर्च रेडियो चैनल लिखल पढ़ण में इंदव सर्च में तवां जी जयपुर टाइप कंदा त आकाशवाणी जयपुर जा ब चैनल्स नजर इंदव एक विविध भारती जयपुर यानी वीबीएस ए बियो हवा महल छपियल नजर इंदड़ असंजो आकाशवाणी जयपुर अजमेर जो आमिर चैनल बस अची पौतासी सही जगह ते हिन हवा महल छपियल रेडियो चैनल ते तव्हां ॿुधी सघंदा आकाशवाणी जयपुर अजमेर जा सब प्रोग्राम ए सिंधी प्रोग्राम ॿुधी सघंदा मंगल विस्पत ए आर्तवार जे ॾींहुं ॾींहं जो 12:10 ते त सामिन ॿुधंदा रहो बिना नागा असांजा सिंधी प्रोग्राम पंहिंजे मोबाइल ते मंगल विस्पत ए आर्तवार जे ॾींहं में 12:10 ते सिंधी प्रोग्राम सदाई गॾु
0: हाणे वरी असां रूबरू थियूं था वाणी सां
2: अन्ना अन्ना रोटी ॾे सुठा सुठा ताम ॾे जल्दी जल्दी रोटी ॾे बुख लॻी आहे रोटी ॾे बुख लॻी आहे रोटी ॾे सीरो पूरी जाम ॾे अन्ना अन्ना रोटी ॾे
0: साथियों असां सां गॾु जुड़ी रही आहे डिंपल जेकी असांखे बैत ॿुधाए रही आहे
3: मां अॼु वार तारा कविता ॿुधाइण चाहियां थी
0: अरे वाह तारे ते कविता वेरी गुड ॿुधायो ॿुधायो
3: वारे तारा गोल तारा रोशन तारा चिमके वारा सांझे तारे निकरो था उभ सजे में पखड़ो था चलको चिमको सारी रात कजे अवाजी केरी बात ज्योति ज्योत अवाजी जे न हुजे वाट ही करी वाट मुंजे
0: अरे वाह ॾाढो बढ़िया तमामु सुठी तरीक़े सां तव्हां एॾी सुठी बैत ॿुधाई हू बि तारे ते हा न ऐं हाणे वारो आहे बाल कहाणी जो त ॿारो अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां थी हिकु प्रेरक बाल कहाणी जंहिंजो उनवान आहे पाण भलो त जग भलो हिकु शीशे जे महल जंहिंजे चारों तरफ़ शीशा ई शीशा माना आरसी लॻल हुई अलाए जे किथां हिकु भिटकियल कुतो अची पहुतो शीशन जे हज़ारे टुकड़नि में पंहिंजो अक्स ॾिसी छिरकी वियो हुन सम्झो त इहे सभई मूं ते हमिलो कंदा सो हुननि खे पंहिंजी शान ॾेखारण लाइ ज़ोर ज़ोर सां भोकणु लॻो

हुन खे सभई कुत्ता पिण भोकंदा नज़र आया। शीशन सां टकराइण करे संदसि भोकण जी आवाज़ वधीक ज़ोर सां ॿुधण में आई। हू डिॼी वियो। संदसि दिलि ज़ोर ज़ोर सां धक धक करणु लॻी। हू वधीक ज़ोर सां भोकियो त हुन खे कुत्ता बि ज़ोर सां भोकंदा नज़र आया। आख़िर हुन हुननि कुतनि ते ज़ोरदार हमिलो कयो। हू बि कुते ते हमिलो कंदा नज़र आया। कुतो ज़ोर ज़ोर सां उछलियो, भोकियो ऐं पोइ गश खाई करे किरी पियो ऐं बेहोश थी वियो। कुझु वक़्त बैदि साॻे महल में हिकु ॿियो कुतो आयो। हुन खे हज़ारे कुता ॾिसण में आया। हू डिॼो कोन, प्यार सां पंहिंजो पुछ लोॾण लॻो। सभिनी कुतनि जी पुछ हुन खे लुॾंदी नज़र आई। सम्झाई त सभु कुता मूंसां प्यार कनि था। कुतो ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं कुतनि जी तरफ़ पुछ लोॾींदो वधंदो रहियो। सभु कुता बि वधिया। हू ख़ुशीअ में ठेंग टिपा ॾियण लॻियो, पंहिंजे पाछूलनि सां रांदि कई ऐं पोइ ख़ुशि थी पुछ लोॾींदो हलियो वियो। हिन कहाणी सां असांखे छा शिक्षा थी मिले ॿारो? सार इहो आहे त हीअ सॼी दुनिया शीशे जे महल मिसल आहे। तव्हांजे सुभाउ जो पाछो हुन ते पवे थो। अगरि तव्हां पाण भला आहियो त जग भलो आहे। अगरि तव्हां पाण ख़ुशि रही ॿियनि जी सुठियुनि ॻाल्हियुनि जी नामुस कंदा, नामुस माना प्रशंसा कंदा, तारीफ़ कंदा, त दुनिया बि तव्हां सां नम्रता ऐं प्रेम जो वहिंवार कंदी। आयो न मज़ो ॿारो कहाणी ॿुधी करे? ॿारो तव्हांजी छुटियूं शुरू थी वियूं हूंदियूं ऐं मोकलुनि में घणेई ॿार नानाणे घर वेंदा त घणेई ॿार घुमण ॿियो किथे वेंदा। त नानाणे घर जॾहिं असां रेलगाॾी में वेंदा आहियूं त असांजी यादूं जेके आहिनि उहे तमामु सुठियूं थी वेंदियूं आहिनि। त तव्हांखे हींअर मां ढोलन राई जो ॻातल ही रेलगाॾी आई वारो गानो थी ॿुधायां।

बारो मजो आयो ना गानो बुधी करे मुखे भी डाडो मजो आयो बारो अज आहे 17 मई अजो की डी हर साल असा आलमी दूरसंचार सूचना समाज दिहाड़ो मल्हाईंदा आहियूं ही दूरसंचार विभाग पारां आलमी स्तर ते आर्थिक सामाजिक विकास में दूरसंचार जी महती भूमिका के उजागर करण लाइ मल्हाइण वारे खास आलमी दिहाड़न मां हिक आहे इन दिहाड़े के मल्हाइण जो खास उद्देश्य दूरसंचार इंटरनेट नई टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल अंतर के पाटण सतत विकास के वाधारो दियण डिजिटल आधारभूत संरचना के मजबूत करना है साथियों सुभाणे यानी 18 मई जो असा मल्हाइंदा आहियूं आलमी म्यूजियम दिहाड़ो मल्हाइण जो खास उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान संरक्षण के वाधारो दियण है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इन मौके ते पंहिंजे स्थलन ते निशुल्क माना मुफ्त प्रवेश ॾींदो आहे इन ॾींहुं जुदा जुदा सरकारी संग्रहालयनि में ख़ासि प्रोग्राम एक्टिविटीज़ रिथियूं वेंदियूं आहिनि त ॿारो पंहिंजो बि कर्तव्य आहे जो पाण हिन संग्रहालय में वञी करे जेकी पंहिंजी दुर्लभ शयूं आहिनि हुननि खे ॾिसूं पंहिंजी जेकी एॾी विरासत आहे भारत जी हुनखे ॼाणूं हुन सां कुझु सीख वठूं हलंदे हलंदे ॿारो तव्हांखे मां हिकिड़ो ॿियो सुहिणो गीत थी ॿुधायां

ॿारो गीत ॿुधी त मज़ो ई अची वियो। ऐं साथियों हाणे घड़ी जी सुई मूंखे इशारो करे पई प्रोग्राम ख़तमु थियण जो। त साथियों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, गर्मियुनि में पंहिंजो ऐं पंहिंजे परिवार जो ध्यानु रखो ऐं असांजा प्रोग्राम ईअं ई ॿुधंदा रहो। वरी गॾिजाणी थींदी सिंधी प्रोग्राम में। तेसीं ताईं हेमा मलानी खे ॾींदा मोकल, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम।
1: मीडी वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोलामारू चैनल है। आप हमें एफएम चैनल पर 101.6 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं।

आप सुनेंगे मनहर उदास की आवाज में फिल्म आप तो ऐसे न थे का गीत। गीत के बोल निदा फाजली के हैं, संगीत उषा खन्ना का।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अब आप सुनेंगे गजल फिल्म का गीत। स्वर मोहम्मद रफी का है, गीत के बोल साहिर लुधियानवी के हैं, संगीत मदन मोहन का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: धूल का फूल फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के एक बजने वाले हैं, श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है।

0: श्री मोदी की 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करे। ये कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करेगी। अदालत ने कहा कि कमेटी ये भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, बैंक तथा सरकार के संबंधित विभागों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल अजमेर से 3 नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस और अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने ये जानकारी दी। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और उससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नागौर के अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुई एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चकढ़णी गांव की सीमा पर एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। कार सवार सभी यात्री बुटाटी के पास संत चतुर्दास महाराज के मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। प्रस्तुत करता है ज्योति वर्मा और बिंदु शर्मा।

0: हंसना हंसाना कोशिश है हमारी, हर कोई खुश रहे ये चाहत है हमारी, भले ही कोई याद करे न करे हमें, लेकिन अपनों को याद करना आदत है हमारी, क्यों बिंदु जी?
1: बिल्कुल, महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो सखी बिंदु शर्मा और
0: ज्योति वर्मा का प्यार भरा
1: नमस्कार। सखियों, माता पिता, पिता जो सदैव थोड़े स्वभाव के सख्त होते हैं और माँ जो प्यार की पराकाष्ठा होती है, हम सब उसी दौर

0: हम परिपक्व होकर हर मौसम को सहन कर सके और अपना कार्य कर सके, और साथ में ये जो धारा है अपनी माँ है वो हमें अपनी आंचल में मानो इस तरह छुपा कर शीतल छाया दे रही है।
1: शीतल छाया माँ का तो आंचल ही कहा जाता है, माँ का आंचल ही शीतल छाया होती है, लेकिन आप कुछ विशेष इसके बारे में बताना चाह रही?
0: बिल्कुल, ये जो धारा है वो आंचल किस तरह से हमें ओढ़ा रही है हमें ये जानना है। तो ये जो मिट्टी है इस तल की वो ऊपर उठकर आंधी का रूप धारण कर लेती है और वो शीतलता देने का हमें प्रयास करती है।
1: बिल्कुल, और ये बात जो आप कह रही है ना, ये मैं तो कहूँ माँ तो होती ही है इतनी महान, उसके आंचल की बात कुछ और ही है, वो शीतलता वो सुकून सिर्फ और सिर्फ माँ ही दे सकती है ना।
0: तो हमारी सखियों को आज आप क्या क्या देने के लिए लाई हैं? मैं अपनी जादुई पिटारे में,
1: हाँ मैं बहुत सारी, मैं क्या आप भी देंगी बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, हम गीत संगीत सुनवाएंगे, बहनों का मनोरंजन करेंगे और बातें करेंगे खूब सारी,
0: ढेर सारी बातों का पिटारा लेकर। हाँ, आज हम अपनी सखियों के साथ में आए हैं, तो पहले सुनाएंगे,
1: पहले गुनगुना लें फिर
0: बिल्कुल
1: आगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम, और ये
1: मेरी बड़ी के नाम। पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
1: क्या?
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बहनों आज है दिन विशेष की बात अगर हम करते हैं ना, तो आज 17 मई को है विश्व दूर संचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जो कि आज के समय की बहुत प्रचलित समस्या बन गई है। तो पहले हम इस उच्च रक्तचाप वाली समस्या और समाधान की बात करें। क्यों बिंदु जी, क्या कह रही हो?
5: बिल्कुल ज्योति, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, ये आजकल बहुत आम समस्या बन गई है। और ये एक अकेली समस्या या बीमारी कहें तो अकेली नहीं है, ये कई बीमारी दोस्तों को लेकर अपने साथ आ जाती है।
4: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इसी वजह से इसे ना साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसकी वजह से हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी के जुड़ी हुई कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है ना कि इसके कोई लक्षण तो दिखाई नहीं देते, फिर अचानक से एक दिन कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती है।
5: हाँ ज्योति जी, अचानक से लगता है बहुत तेज गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है और हम उससे उपचार में लग जाते हैं, जबकि ये सब ये हो रहा होता है वीपी की वजह से, है ना। तो ज्यादातर लोग इस स्थिति में सिर्फ अनभिज्ञ होते हैं बेचारे,
4: जानते नहीं।
5: और आपको पता है दुनिया भर में करीब 1.28 अरब से अधिक वयस्क जो है, मतलब युवा, वो इस उच्च रक्तचाप से प्रभावित हो रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है,
4: बहुत ज्यादा इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसका कारण क्या होता है कि नसों में खून गाढ़ा हो जाता है और उसे पंप करने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इस वजह से धड़कनें बढ़ जाती हैं, और धड़कनें बढ़ती हैं तो रक्तचाप बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से पसीना आता है। तो लोग डरते हैं कि गर्मी लग रही है, वो पंखा करने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, और बस ऐसे ही वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हाई बीपी, तब तक कुछ और नई समस्या खड़ी हो जाती है।
5: ज्योति देखा जाए तो इस बीमारी में आज की तनावपूर्ण अस्त व्यस्त जिंदगी का बहुत बड़ा हाथ है। इंसान की जो दिनचर्या है वो बहुत अधिक खान पान की वजह से अव्यवस्थित हो गई है, शारीरिक क्रियाएं भी अव्यवस्थित होती जा रही है। पहले लोग जो होते थे ना वो क्या करते थे, सुबह जल्दी उठना, ठंडी हवा लेना और समय पर नाश्ता लेना,
4: खाना
5: और शुद्ध खाना। आखिर देर रात तक पार्टियां चलती है, फिर नींद पूरी नहीं होती, और इसका एक कारण ये भी है कि हमारी दिनचर्या सेट नहीं है।
4: यही सब तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसी कारण से लोगों में जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाए जा रहे हैं, जिससे उद्देश्य इनका यही होता है, जिससे कि लोगों को सटीक एकदम मापन का पता चले कि भाई कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए और इसकी रोकथाम कैसे की जाए, और ये समस्या ज़्यादा बढ़े नहीं तो इसको कैसे नियंत्रित की जाए, इसीलिए ये दिवस मनाए जाते हैं।
5: ज्योति हमारी बहनें तो चिंता में बढ़ गई होगी कि इस खामोश दुश्मन से कैसे बचा जाए। अरे बहनों घबराइए मत, हम बताते हैं इससे बचने के सरल उपाय। और सबसे पहले आप खाने में नमक की मात्रा ही कम रखें, क्योंकि स्वाद के चक्कर में लोग समझौता नहीं करना चाहते।
4: लोग तो को चटपटा खाना होता है ना, तो ऊपर से नमक डाल के भी खाते हैं।
5: हाँ,
4: और है ना, इसके साथ साथ एक उपाय मैं बताती हूँ कि हम सभी को पसीने से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब है कि हर दिन कुछ ऐसा

0: काम जरूर करना चाहिए जिसमें पसीना आए, फिर चाहे वो व्यायाम करें, कोई टहलें, दौड़ लगाएं, या फिर डांस भी कर सकते हैं ना, किसी भी तरह करें, लेकिन शरीर को एक्टिव रखें।
1: हाँ, इसके साथ सुबह की ताजी हवा खाएं, और जो है ना सांसें है गहरी लें, पर्याप्त मात्रा में नींद, तनाव से मुक्त रहें, क्योंकि हमेशा अच्छा है या बुरा है, जो होने वाला वो तो करने वाला ईश्वर है, हमें तो सिर्फ अपने कार्य को ध्यान रखना चाहिए, वो सही होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और ये तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। और फिर भी अगर कोई समस्या लगे तो डॉक्टर से चेकअप जरूर जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। अब अगर हम सारी जो जितनी बातें करी है ना, उसको अगर सारांश के रूप में कहूँ तो नमक कम, खुशियाँ ज्यादा, सेहत का करें खुद से वादा, और बीपी को रखे कंट्रोल में आज अगर, तो कल का स्वास्थ्य आपके हाथ में है ना।
1: क्या बात है।
0: और अगर हम अपनी बहनों की भी थोड़ी हेल्प कर देते तो इस गीत के साथ आप भी जरा डांस कर लीजिए, कुछ पसीना बहा लीजिए।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: Cena.
1: बिंदु जी, जैसे हम अभी दिन विशेष की बात कर रहे थे ना, तो आज के समय में जो हमने अभी बात करी थी, थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करिए कि हमारे जैसे फ़ोन का डेटा ख़त्म हो जाए या सिग्नल ही गायब हो जाए, कैसी ज़िंदगी होगी आपकी? क्या हुआ, डर गए?
2: ज्योति जी, ये तो आपने और मुझे ही नहीं बल्कि बहनों को भी डराने वाली बात कह दी। ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया, जिंदगी बिल्कुल सुनी हो गई, वीरान हो गई।
1: बिल्कुल सही बिंदु जी, इसलिए आज का दिन बहुत खास है। आज हम उस धागे का जश्न मना रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आज है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस।
2: सच में एक वो दिन थे जब हमारे संदेश पहुंचाने में हफ्तों लग जाते थे। पहले कबूतर, फिर घुड़सवार, फिर डाके, और अब एक वीडियो कॉल पर विश्व को किसी भी कोने में बैठे हम व्यक्ति से बात कर सकते हैं, अपनी गपशप कर सकते हैं, कॉफी चाय साथ में एंजॉय कर सकते हैं और कई फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं।
1: कॉफी तो की बात क्या करिए, आपने कॉफी पी नहीं सकते, साथ में कॉफी में कितना झाग है आपकी कॉफी में, इतना भी देख सकते हैं वीडियो कॉल है ना। और फंक्शन अटेंड करने के साथ ये सब देख सकते हैं हम, कौन क्या खा पी रहा है, किसी समस्या पे डिस्कस कर सकते हैं और चाहे तो उसे देखकर उसके बारे में जानकर अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं ना।
2: बिल्कुल बहनों, इसीलिए आज यानी 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1969 से हुई। इसका उद्देश्य इंटरनेट और नई तकनीकी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
1: और इसका प्रमुख महत्व है संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डिजिटल अंतर को कम करने पर जोर देना। और ये सब केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता है, ये जरिया है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हमारे विकास का, देश के विकास का, विश्व के विकास का।
2: बिल्कुल, इस डिजिटल क्रांति ने

0: सारी दुनिया को एक मुट्ठी में ला दिया, जिसे छोटे छोटे गांव में बैठे बैठे लोग विश्व को किसी भी कोने में बैठे किसी भी क्षेत्र की महान हस्तियों से विचार विमर्श कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं।
1: सीख क्या सकते हैं बिंदु जी, आजकल तो कई कई ऐसी बीमारियां भी हुई हैं ना, जिनके लिए हमें कोई विदेशी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है, तो वो अपनी जगह पे बैठे बैठे यहाँ के ऑपरेशन तक करवा देते
0: हैं। हाँ, मैंने भी एक बार अखबार में पढ़ा था ऐसा।
1: और इस साल की तो थीम ही हमें याद दिलाती है कि तकनीक सिर्फ अमीरों या शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, असली कामयाबी तब है जब गांव के आखिरी छोर पर बैठा बच्चा भी इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ सके। इसी लिए इसे ही कहते हैं डिजिटल इंक्लूजन। तो फिर आज दूर संचार दिवस पर हम अपने इस दूर संचार माध्यमों से मनोरंजन कर दें बहनों का।
0: बिल्कुल,
1: कोई गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: रहा है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
5: ओह लवली, वेल डन।
4: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
5: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
6: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
5: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
6: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
5: आप कौन?
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: सखियों, युग के परिवर्तन को हम दिल से स्वीकारते हैं। आज बदलते परिवेश में हमारी बहनें कहीं न कहीं पहुंची हुई है और ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो पहुंची नहीं है। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक हमारी भारतीय महिलाओं ने अपना गुणगान के लिए परचम लहराया है। सीमाओं से खेत खलियानों में, घर गृहस्थी से लेकर राजनीति में, सब जगह हमारी बहनों ने गौरवमय इतिहास रचा है।
10: पर ये भी ध्यान रहे कि वो सारी नहीं है, है ना?
9: हाँ, कुछ बच्चियाँ जो नादान होती है, सहेलियों के साथ में खेलना, घूमना फिरना, ये सब शौक होता है, है ना, युवा अवस्था में खास होता है।
10: और ऐसा शौक तो हमें भी है ना।
9: बिल्कुल,
10: हम भी क्या सब नहीं है, हम सब नहीं है।
9: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम उनको या कामकाजी बहनों के लिए एक खास बात यह है कि कई बार कठिन दौर होता है, रास्ते में गाड़ी का यूज भी जैसे करती हैं, बाइक चलाना गाड़ी चलाना हमारी बहनें आज आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनके लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बाइक है, गाड़ी है, स्कूटी है, वो ड्राइव करती है खुद और लंबा सफर तय करती है अपने जॉब के लिए जहाँ भी जाती है, क्योंकि काम काज में इसकी जरूरत रहती है। तो हमारी बहनों को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए,
10: क्योंकि आजकल कामकाजी ही नहीं, दूसरी महिलाएं भी हर तरफ कहीं ना कहीं सफ़र करती हैं, यात्राएं करती हैं, लेकिन जहां कहीं भी उन्हें सफ़र करना हो तो सबसे पहले उनको ये पता करना चाहिए कि वो सेफ़ हैं वहां जाने के लिए या नहीं है, उसका ध्यान रखें और स्मार्टली यात्रा करें ना।
9: हाँ,
10: तो बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, मैं समझ रह सकती, सुरक्षित रह सकती,
9: बिल्कुल मैं समझ गई, क्योंकि जैसे मोबाइल है उसको हमेशा चार्ज रखें, कि जरूरत पड़ने पर ऐसा होता है कि अल बैटरी डिस्चार्ज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, लोकेशन ऑन रखें।
10: हाँ, ये जो हमारे कई ऐप दिए हुए हैं और पुलिस हेल्पलाइन भी है, तो ये सारी जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, जिनका आजकल अभी हम बात ही कर रहे थे डिजिटल युग में, तो अब डिजिटल युग की हम जब काम ले रहे हैं तो उसे हम अपनी सुरक्षा के लिए भी काम ले सकते हैं।
9: बिल्कुल, ये तो भी डाउनलोड कर ही लेने चाहिए, ईश्वर करे आपको जरूरत ही नहीं पड़े, फिर भी अगर पड़ जाए तो आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में, इसका प्रयोग जरूर करें।
10: हाँ, और क्योंकि इससे कई बार हम जब यात्रा करते हैं, कई बार हम कहीं टूर भी प्लान कर लेते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ, तो वहाँ आने जाने के से पहले हमें ये जो हमारा डिजिटल यंत्र है ना, मोबाइल, ये बहुत सारी चीज़ें बता देता है कि वहाँ पे रहने की क्या सुविधा होगी, हमें वहाँ पहुँचने का रास्ता कितना लंबा होगा, और ये सारी चीज़ें हम जानकारी करके उसमें अपने मोबाइल में जो सारे ऐप जो अभी हम बात कर रहे थे ये भी डाउनलोड कर लें, तो वहाँ जाते ही हमें किसी प्रकार की रास्ते में समस्या आती है उसका समाधान भी हो जाएगा, और वहाँ पहुँचने के बाद भी हमें किसी भी जरूरत की चीज़ की जरूरत पड़ती है, जैसे अभी आपने

0: ना कहीं गाड़ी खराब हो जाए, जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कहीं रास्ते में कहीं ट्रेन में कोई समस्या आती है, तो हम इन सब के लिए पहले से अगर सावधान रहते हैं तो हमें कई चीज़ों का फायदा मिल जाता है।
1: अरे आपके कहने का मतलब कुल मिलाकर इतना है कि जिस तरह हम जहाँ यात्रा करते हैं तो कुछ सामग्री पैक करते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: उसके साथ साथ अपने मोबाइल को पूरा अपडेट
0: पैक
1: कर
0: करके
1: लें,
0: हाँ,
1: ताकि
0: जैसे,
1: कोई
0: हाँ,
1: समस्या ही नहीं हो, जैसे पावर बैंक है या उसके साथ में कोई ऐप डाउनलोड करने पहले से करके रखे,
0: बिल्कुल
1: है ना, क्योंकि ये काम तो हमारे रोज के हैं, हमें रोज ही बाहर जाना होता है, रात्रि में 10-15 मिनट आराम से बैठकर ये सारा काम पहले ही कर लें, तैयारी कर लें
0: पहले की, तैयारी कर लें तो सुरक्षित रहेंगे,
1: हाँ, सुरक्षित रहे, निरंतर प्रगति करते रहे और हंसते गाते गुनगुनाते रहे, कुछ
0: तो
1: इस तरह
0: सफर अच्छा बीतेगा ना।

0: सखियो, आप बहुत खुश होंगी। बच्चों की छुट्टियां जो हो गई है,
1: सभी खुश हैं, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं।
0: बिल्कुल, बच्चे भी बहुत खुश हैं। किसी को नानी के घर जाना है, किसी को भुआ के, किसी के मौसी के, और बहुत से लोग तो हिल स्टेशनों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कई ट्रेनों की टिकट बनवा चुके हैं, कई बनवा रहे हैं, कई रिजर्वेशन की लाइन में खड़े हैं, है ना। बिल्कुल, जाना भी चाहिए। हमारा तो पूरा जो बहनों का ग्रुप है वो माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जा रहा है।
1: अच्छा अच्छा, और टिकट बनवा ली आपने?
0: हाँ, ट्रेन की बनवा ली, ऑनलाइन बनवाई है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ऑनलाइन सुविधा तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई। मुझे तो एक साथी ने डरा ही दिया था कि ऑनलाइन टिकट बनवाना, सामान मंगवाना या अनजान लोगों से लेन देन करना, ये खतरे से खाली नहीं है, ये कभी भी इसमें ठगी हो सकती है।
0: बिल्कुल तो, भी गलत नहीं है, ये बात एकदम सही है। हाँ, हमें इसमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखें कि किसी अनजान या अपरिचित ब्रांड से हम ऑनलाइन खरीदारी नहीं करें, और बाहर तो ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो टिकट आपको भी बनवा ही लेनी चाहिए।
1: टिकट तो मैं बनवा ही लेती हूँ, लेकिन बहनों को भी सावधान कर दें कि ऑनलाइन टिकट या ऑनलाइन सामान मंगवाते समय या फिर ऑनलाइन कोई भी काम करते समय, कोई भी शॉपिंग आप करते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सभी लोग लगे पड़े हैं यही सब करने में, ज़्यादातर शॉपिंग ये ऑनलाइन चल रही है। सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले तो वो साइट चेक करनी चाहिए कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि आजकल ऐसी गलत साइट जो है ना, लुटेरे लोगों की तो कमी थोड़ी है, जहाँ चाहे वहाँ से वो लोग गलत साइट पे डाल देते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है, हम कुछ सामान मंगवाते हैं और उसके बाद सामान कुछ बताया जाता है और आता वो कुछ है।
0: हाँ, ऐसा भी होता है कई बार। कई बार हम ऑनलाइन जिस चीज़ को चित्र देखते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वो चीज़ वो नहीं होती है, और या फिर उसकी क्वालिटी वो नहीं
1: होती है, बहुत डाउन होती है। और कई बार सामान ही बदल दिया जाता है।
0: हाँ,
1: जब हमने सामान कुछ मंगवाया,

0: आता कुछ है, और ऐसी जो होती ना ठगी वाली साइट, उनमें वापस उसको रिफंड का ऑफर नहीं होता
1: नहीं
0: है,
1: होता
0: ये
1: है।
0: नहीं होता है, तो हम लोग बीच में फंस जाते हैं, पैसा चला गया और उसके बाद हमारे सामान भी
1: हमारे
0: नहीं मिला।
1: हाँ बिल्कुल बहनों, सावधान रहकर अगर ऑनलाइन खरीदारी कीजिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जो ब्रांड है उसका देख लीजिए, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप वहाँ से खरीदिए जहाँ पर विश्वसनीय रूप से आप खरीदारी कर सकते हैं, करना तो चाहिए, क्योंकि ये सुविधा बहुत ज़रूरी है और भागती दौड़ती ज़िंदगी में आपके लिए उपयोगी भी है, पर थोड़ी सी सावधानी आप को साइबर क्राइम से बचा सकती है।
0: और अगर ऐसे ही बहनें सुरक्षित ये उपयोग करती रहेंगी तो ये हमारे समय की बचत भी करती है ये ऑनलाइन शॉपिंग, और सुविधाजनक भी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को देख के अपनी पसंद से मंगवा सकते हैं। लेकिन बस एक सावधानी की ज़रूरत है, वो सावधानी अगर रखी है तो आप सुरक्षित हैं और आपका ये काम बहुत कम समय में और बहुत अच्छी तरह हो सकता है। और इस तरह से शॉपिंग करते हुए आप अपनी मनोरंजन भी करते जाते हैं साथ में,
1: आप
0: और
1: महफूज रहें, खुश रहें, मस्त रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें।

0: बिल्कुल सखियों, आज हमारे जाने के बाद आप भूलने का विफल प्रयास करना ही मत, क्योंकि
1: भूलने का प्रयास क्यों करेंगे, भूलने का प्रयास करना ही नहीं है आपको, तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है, क्योंकि मुस्कुराने के लिए वजह मत ढूंढिए, वरना जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। कभी वे वजह मुस्कुरा कर भी देखें, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराने लगेगी, है ना।
0: क्योंकि हमारी जगह तो आपके दिल में है, और हम करते हैं आपसे जल्द मिलने का वादा। और अभी दीजिए इजाजत आपकी अपनी रेडियो सखी बिंदु शर्मा और
1: ज्योति वर्मा को,
0: प्यार भरा नमस्कार।

0: काल में.
1: इन द कमिंग 25 इयर्स द सेक्टर्स दैट विल गिव डायरेक्शन टू द ग्लोबल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इन ऑल दोस सेक्टर्स इंडिया इज टुडे मार्किंग इट्स स्ट्रांग प्रेजेंस एज अ फाउंडर एंड दिस इटसेल्फ शोज दैट द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज वेरी ब्राइट. फॉर द फ्यूचर ऑफ एआई एंड डीप टेक, टेक पार्क्स लाइक दिस विल डू अ वेरी ग्रेट जॉब एंड विल ऑल्सो टेक दिस फॉरवर्ड.
0: काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे.
2: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani.

0: IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable. Says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए

0: उत्साह और गर्व का विषय है।
1: आई वर्क फ्रॉम अ बिजनेस काउंसिल।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ, जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
3: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
3: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5,00,000 लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी।

0: एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम

0: में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जा रहे थे। यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दिन के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आप सुनेंगे सौदागर फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर की आवाज़ में गीत। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आपने हीरो फिल्म का एक गीत सुना। आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और साथियों की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। स्वर लता मंगेशकर का है, गीत के बोल देव कोहली ने लिखे हैं।

वीर जरा फिल्म में लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 3 बजे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज पर हमारी यह सभा यहीं समाप्त होती है। FM चैनल 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारी सभा जारी रहेगी।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजने को है, हमारी मीडियम वेव पर दूसरी सभा आरंभ होती है। आरंभ में सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: वैष्णवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मदद हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान

0: अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 5:05 हो चुके हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: डे वन, सुबह 5 बजे का अलार्म। नए रनिंग शूज पहन लिए हैं, कानों में ईयरफोन भी लगा लिए हैं और सीधे 5 किलोमीटर की दौड़ का फुल मोटिवेशन, फुल जोश लेकर के दौड़ भी लगा दी है।
1: डे टू, अलार्म 5:15 पर लगा। पैरों में थोड़ा दर्द था लेकिन फिर भी खुद को धक्का देकर 3 किलोमीटर की दौड़ तो लगा ही ली।
0: डे थर्ड, मौसम जरा सा ठंडा होने लगा है। एक काम करते हैं, अलार्म को स्मूज कर देते हैं, शाम भी आएगी ही, कल चले जाएंगे वरना शाम को चले जाएंगे।
1: और डे फोर, मोटिवेशन का दी एंड। रनिंग शूज वापस डब्बे में और हम वापस अपने उसी पुराने कंफर्ट जोन में। दोस्तों, क्या ये कहानी आपको थोड़ी सुनी सुनी सी नहीं लगती?
0: नमस्कार, आदाब, खमागणी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने फेवरेट शो और स्पेशली आप लोगों के लिए जिस शो को लाया गया है उस शो में, यानी कि युववाणी में। और जिस आवाज को आप अभी सुन रहे हैं वो है मेरी, यानी कि माधव की।
1: और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त गीता और आपका सभी का स्वागत करती हूं।
0: दोस्तों, शो की शुरुआत में अभी हमने जो कहानी हमने आपको सुनाई, दरअसल वो सिर्फ सुबह उठकर दौड़ने की नहीं है, ये कहानी हमारे हर उस नई शुरुआत की है जो बहुत जोश के साथ शुरू होती है लेकिन कुछ ही दिनों में दम तोड़ देती है। और इसीलिए आज के शो के अंदर हम इसी कंसिस्टेंसी ना रख पाने की हमारी जो आदत है इस पे बात करेंगे और इसे कैसे सुधारा जाए इसके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल माधव, आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं है या वो मेहनत नहीं करना चाहते।
0: सही बात है।
1: हमारी सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि किसी काम को लगातार करते रहना। हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, रातों रात दुनिया को बदलने का प्लान भी बनाते हैं लेकिन जब उस प्लान पर रोज काम करने की बारी आती है तो हम थोड़े बोर हो जाते हैं।
0: बहुत सही कहा गीता तुमने। दोस्तों, दरअसल ये जो मोटिवेशन है ना, ये एक मेहमान की तरह होता है जो कभी कभी आता है और आपको बहुत जोश दे जाता है, बहुत खुश कर जाता है, सपने दिखा देता है। लेकिन जो निरंतरता, कंसिस्टेंसी है, ये आपके परिवार के एक सदस्य की तरह होती है जिसे हर रोज आपके साथ रहना होता है। आज आप किसी भी फील्ड को उठाकर देख लीजिए, चाहे RJS जैसे जुडिशियरी जैसे टफेस्ट एग्जाम हो, UPSC सिविल सर्विसेज, या फिर लॉ ऑफिसर जैसे किसी बड़े या कठिन लॉ एग्जाम की अगर बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या वो एक रात के अंदर या कुछ घंटों की पढ़ाई करके, मोटी मोटी किताबें पढ़ करके पॉसिबल है कि वो एक ही दिन में या एक ही रात में जज बन जाए?
1: कभी नहीं माधव, उसके लिए तो आपको हर दिन बिना चूके अपने स्टडी टेबल पर बैठे रहना पड़ता है, चाहे मन करे या ना करे।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, ये सोचिए कि आपने अपनी सेहत सुधारने के लिए सुबह उठकर वॉक करने या फिर रनिंग करने या योगा करने का संकल्प लिया है। एक दिन के योग से शरीर में कोई बदलाव आएगा? जाहिर सी बात है, नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं, अपने रूटीन के अंदर शामिल कर लेते हैं, तब जाकर आपको वो परिणाम मिलने लगते हैं जिसकी आपने उम्मीद पहले दिन की थी। निरंतरता का मतलब ही ये है दोस्तों कि मूड नहीं है वाले दिन भी आप उसी मोटिवेशन के साथ जब उस काम को करते हैं तो ये कंसिस्टेंसी आपसे करवाती है।
1: और पता है माधव, इसके पीछे एक बहुत ही

0: काफी जबरदस्त साइंस है।
1: अच्छा
0: दोस्तों, क्या आपने कभी एक पत्थर पर लगातार गिरती हुई पानी की बूंद को देखा है? पानी की एक बूंद बहुत कमजोर होती है और पत्थर बहुत स्ट्रांग, लेकिन जब वही पानी की बूंद सालों तक लगातार एक ही जगह पर गिरती रहती है तो वो उस कठोर पत्थर का सीना चीर कर उसमें भी सुराख कर देती है। पानी की ताकत उसकी कठोरता में नहीं दोस्तों, उसकी निरंतरता में होती है।
1: क्या बात है गीता, ये जो तुमने अभी बात बताई ना, ये मैंने सुनी भी है और ये बात बहुत सच है दोस्तों। मुझे एक याद आ रही है, मैंने किसी

0: बनने रोज पढ़ने का टारगेट रखिए। अगर फिटनेस बनानी है तो पहले दिन 10 किलोमीटर दौड़ने के बजाय रोजाना सिर्फ 2 किलोमीटर की वॉक करिए या रनिंग फिक्स कर लीजिए। जब आप छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करते हैं तो आपके दिल को खुशी मिलती है, आपके दिमाग छोटे छोटे से कंपाउंड्स की फॉर्म में डोपामाइन रिलीज करता है और यही खुशी आपको अगले दिन फिर से काम करने के लिए मजबूत बनाती है, मजबूर करती है।
1: और सबसे बड़ी बात, परफेक्शन इसके पीछे तो मत ही भागिए। अगर किसी दिन आप 100% नहीं दे पा रहे तो कम से कम 20% तो दीजिए, लेकिन उस चेन को टूटने मत दीजिए। कुछ ना करने से थोड़ा करना हमेशा बेहतर होता है।
0: बिल्कुल।
1: और आज की ये जो खास जो विषय है उसमें हम आपसे इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि निरंतरता कैसे हमारे जीवन में जो छोटी छोटी आदतें हैं उससे बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, हो सकता है कि आपकी भी कोई ऐसी आदत हो जिसको आप अडॉप्ट करना चाह रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसी आदत हो जो आप छोड़ना चाह रहे हो लेकिन छोड़ ना पा रहे हो। जैसे कि आप सुबह की वॉक को अपने रूटीन में शामिल करना चाहते हो, या कोई ऐसी हॉबी हो जिसको आप रोज़ चाहते हैं कि वो आपके नेचर के अंदर आ जाए, या कुछ पढ़ने की आदत होती है जिसको आप लगाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसी आदतों को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी आदत, अपना नाम और अपनी स्टोरी आपकी उस आदत के पीछे हमारे एक्स एंडल आकाशवाणी बीकानेर पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर हम यूथ की कम्युनिटी, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ हम सब लोग अपनी अपनी नई चीज़ों को शेयर करेंगे और एक साथ मिल करके मोटिवेशन ले करके एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप नई चीज़ों को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाना ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप समय के साथ साथ चल सकते हैं। बाकी तो सब बढ़िया है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने परिवार के ऊपर, आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें आपके हाथ से बाहर है उन सबको भगवान पे छोड़ दीजिए।

Hunter.

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: दोस्तों, आपने कभी छोटे बच्चे को साइकिल सीखते हुए देखा है? वो शुरुआत में जब साइकिल सीख रहा होता है कितनी मर्तबा गिरता है। हमारे साथ भी कहानी कुछ ऐसी सी ही होती है। जब हम नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो अक्सर हमसे गलतियां होती है, लेकिन उन चीज़ों की गलतियों से डरकर हमें उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है आपके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, लेकिन उन रुकावटों से आपको डरना नहीं है। और उन रुकावटों से पार करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आकाशवाणी आपके लिए क्विज सेक्शन लेकर के आता है, जिसमें हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और उन सवालों के जवाब हम आपसे जानते हैं कार्यक्रम के अंत में। तो हमारा आज का जो आपसे पहला सवाल है वो है
7: कि इस 5G या 6G नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले अक्षर जी का फुल फॉर्म सिर्फ एक शब्द में है और वो क्या है।
6: और हमारा आज का आपसे दूसरा सवाल है
7: कि हाल ही में भारत के किस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप ने दृष्टि नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है।
6: तो बस आप कलम और अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इन सवालों के जवाब को खोज करके रखिएगा और कहीं लिख लीजिएगा। हम आपसे ये जवाब मैच करेंगे प्रोग्राम के लास्ट में। सुनते रहिए, हम बस यूं गए और यूं आए।
8: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, आप ना एक चीज़ इमेजिन कीजिए, और मुझे लगता है इमेजिन शायद करने की ज़रूरत ही नहीं, आपके साथ कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। अपने लैपटॉप पर एक बहुत ही शानदार वीडियो आप एडिट कर रहे हैं, या फिर आपके किसी क्लाइंट को एक भारी भरकम फाइल आप भेज रहे हैं। लोडिंग जैसे ही 99% पर पहुँचती है, अचानक से स्क्रीन हैंग हो जाती है और सामने एक डायनासोर पॉपअप करता हुआ आता है और लिखा हुआ आता है, नो इंटरनेट कनेक्शन, ट्राई अगेन।
7: सच कहूँ माधव, तो आज के युवाओं के लिए ये किसी हॉरर फिल्म के सीन से कम नहीं। फोन की स्क्रीन पर नो नेटवर्क या फिर नो वाईफाई का सिग्नल देखकर दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि शायद तो एग्जाम हॉल के बाहर भी ऐसा नहीं हुआ होगा।
6: बिल्कुल दोस्तों, और गीता, आज की डेट में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर हम इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं, इसके बिना एक दिन भी गुजारना लगभग नामुमकिन लगता है।
7: बिल्कुल,
6: और इसी जादुई नेटवर्क और संचार क्रांति के नाम है हमारा आज का ये वाला विषय। 17 मई को दोस्तों पूरी दुनिया में विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है।
7: अगर दोस्तों इतिहास की बात करें तो 17 मई 1865 को ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की स्थापना भी हुई थी। सोचिए दोस्तों, एक वो वक्त था जब लोग महीनों तक चिट्ठियों का इंतजार करते थे, और एक आज का वक्त जब फाइबर ऑप्टिक केबल्स और 5G ने पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है।
6: बिल्कुल,
7: और इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो है हमारी यूथ को।
6: ये तो है।
7: अगर ये टेक्नोलॉजी न होती तो क्या हम छोटे शहर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले पाते? क्या हम घर बैठे डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर फ्रीलांसिंग के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ पाते? आज इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी ताकत है।
6: बिल्कुल सही कहा तुमने गीता, लेकिन इसके साथ साथ ये दिन के लास्ट में जो वर्ड यूज़ होता है सोसाइटी डे, इसका मकसद हमें ये बताना भी है कि आप डिजिटली डेवलप हों, लेकिन आप डिजिटली इतने डेवलप ना हो जाएं कि वो डेवलपमेंट डिवाइडेशन में बदल जाए। यानी कि आपको इंटरनेट का यूज़ करना है लेकिन

0: परिवार के साथ भी जुड़े रहना है, अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। दोस्तों, बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमारे लिए एक बहुत बढ़ती हुई मुसीबत भी है, तो कोशिश करें कि आप उसे भी रिड्यूस करें। और जब सोसाइटी की बात आती है, परिवार की बात आती है, तो आप सब जानते हैं हमारे परिवार जिनकी वजह से सुरक्षित हैं, वो है हमारी भारतीय सेना, वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, वो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आइए, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस के नाम कैलाश खेर ने क्या कहा है, हम उसे जानते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाशवाणी।

0: होता है सांस।
1: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
2: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
1: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: माधव, उस गर्मी को देखा, इस गर्मी ने तो हाल को बेहाल कर दिया है। बाहर पैर रखते ही ऐसा लग रहा है मानो सिर की नसें फटने लगेगी। दिल की धड़कन तो कुछ यूं हो रखी है कि छाती में भारीपन सा महसूस हो रहा है।
1: गर्मी वाली बात तुम्हारी बहुत ज़्यादा सही है सच में। अभी दोस्तों बाहर की गर्मी, अगर आप बाहर गाड़ी लेके निकलें तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अभी जो तुमने सिर की नसों के फटने की जो बात कही, दिल के धड़कन की बात कही, दोस्तों ये बहुत सीरियस पॉइंट है अगर आप इस पर ध्यान दें तो। तुम्हें पता है गीता, आज 17 मई है, और 17 मई को कौन सा विशेष दिन मनाया जाता है?
0: कौन सा?
1: आज मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। शरीर में जो असहजता अभी तुमने जो महसूस की और तुमने कहा थोड़ी देर पहले तुम कर रहे थे, उसका सीधा संबंध इसी हाई बीपी या बीपी से होता है।
0: अच्छा, भला इस जानलेवा गर्मी का हाई बीपी से क्या संबंध है? हम तो यही समझते हैं कि गर्मी में तो बस पसीना आता है, ज्यादा से ज्यादा प्यास लगती है।
1: यही तो समझने वाली बात है गीता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाई बीपी सिर्फ सर्दियों की बीमारी है, परंतु दोस्तों ये भीषण गर्मी हमारे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की कड़ी परीक्षा ले लेती है। वास्तव में जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना बहाता है, और इसके लिए खून की नसें

0: डायलेक्ट हो जाती है, यानी कि फैल जाती है ताकि गर्मी बाहर निकल सके।
1: अच्छा, ये तो सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, फिर समस्या कहाँ आती है?
0: समस्या इसके बाद शुरू होती है। वास्तव में जब लगातार पसीना बहता है तो शरीर में पानी और नमक की एक भारी कमी भी हो जाती है, जिससे डिहाइड्रेशन होने लगता है और पानी कम होने से खून गाढ़ा होने लगता है। अब गाढ़े खून को पूरे शरीर में पंप करने के लिए जाहिर सी बात है दिल को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी और इससे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और इवेंचुअली आपका ब्लड प्रेशर भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: ये तो वाकई हैरानी वाली बात है। वैसे देखा जाता है माधव कि आजकल हर दूसरे घर में बीपी के मरीज मिल रहे हैं।
0: ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है दोस्तों, और ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर आप हमारे घर में भी देखें तो हमें 2-3 लोग ऑफ कोर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सुबह या फिर शाम को बीपी की गोली लेते हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये जो बीपी है या हाइपरटेंशन है या लो बीपी है, ये वास्तव में साइलेंट किलर जैसे हमारी बॉडी में काम करता है। दुनिया भर में लगभग गीता 1.28 अरब लोग आज की डेट में हाइपरटेंशन से पीड़ित है, बताओ।
1: अच्छा,
0: लेकिन इनमें से 46% जो है उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ये बीमारी है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते, पता ही नहीं लगता कि बीपी के लक्षण है क्या ये।
1: हाँ माधव, पहले तो ये जो बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज के खराब जीवन शैली, तनाव और जंक फूड के कारण 18 से 40 वर्ष के युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: बहुत ज्यादा, और इसका कुछ तो कारण ये भी है गीता कि नमक का अत्यधिक सेवन। भाई WHO के भी रिसेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से एक व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, मात्र 5 ग्राम। अब तुम भी हिंदुस्तानी हो और मैं भी और आप भी दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे लिए 5 ग्राम तो मतलब ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल सी बात हमें लगती है, क्योंकि हम जितना जंक फूड और हमारे खाने में और हमारी सब्जियों में और हम पूरे दिन के अंदर जो हमारा एक वो है इंडियन ट्रेडिशन है उसके अंदर 5 ग्राम बहुत पीछे छूट जाता है। हम दिन भर में लगभग 10 से 12 ग्राम नमक खा जाते हैं आराम से। ये एक हेल्दी इंसान की बात कर रहा हूँ मैं जो नॉर्मल अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। पैकेट बंद चिप्स, नमकीन, अचार, पापड़, चटपटी चीज़ें, ये नमक के आप ये मान लीजिए कि बॉम्ब हैं। इसके अंदर बहुत सारा नमक होता है और इससे आपकी नसों पर बहुत दबाव पड़ता है दोस्तों।
1: लेकिन ये बताओ तुम कि आखिर बीपी को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी क्यों है?
0: भाई देखो, शरीर की कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन होना दोस्तों तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक ख़राब होता है तो भाई दूसरा जाहिर सी बात है थोड़ा ही ख़राब हो लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन बीपी की बात करें को ख्याल रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी से अंगों को नष्ट करने का, आप ये कह लीजिए कि हाई बीपी जो आपके बॉडी ऑर्गन्स का जो डैमेज है उसका पहला पॉइंट है, ये शुरुआती लक्षण है। बीपी लंबे समय तक अगर बढ़ा रहे तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। धमनी असक्त होने से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक या लकवा मारने की समस्याएं भी, तुमने रिसेंटली सुना होगा गीता कि बहुत सी हम ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कोई बच्ची डांस कर रही थी, डांस करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, कोई इंसान सिग्नल के नीचे खड़ा था, खड़ा खड़ा अचानक से गिर गया, गाड़ी चला रहे थे अचानक से गाड़ी चला चला डेथ हो गई, बात करते गिरते गिर गए। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी बॉडी जब एक बहुत लंबे टाइम से आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता तो एक दिन फिर आपके डैमेज्ड ऑर्गन्स आपको सीधा रिजल्ट देते हैं जो कि जाहिर सी बात है हमारे लिए ख़राब होते हैं और व्यक्ति डायलिसिस पर आ जाता है। इसके अलावा इससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है और काफ़ी नुकसान है इसके।
1: बिल्कुल दोस्तों, और जो बदलाव है वो हमेशा घर से शुरू होता है। हम मिलकर ये कदम उठा सकते हैं कि नमक पे थोड़ा कंट्रोल करें, प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन आधा ही कर लो और सक्रिय जीवन शैली, प्रतिदिन योग, प्राणायाम या हल्की सैर तो ज़रूर है, और दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स या मीठे जूस के बजाय प्राकृतिक छाछ, नींबू पानी और तरबूज खाएं। हम इस जो बीपी दिवस है इस पर एक डिजिटल बीपी मशीन भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होगा कि न सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि आस पड़ोस के भी लोगों को नियमित रूप से बीपी चेक करने को मिलेगा और समय पर पहचान होने से हम किसी की जान भी बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक चीज़ और है दोस्तों जो कि आजकल हमारी लाइफ में आई है, पहले तो नहीं थी। भाई वेदों के अंदर तो इस बात का प्रमाण नहीं मिलते क्योंकि उस वक्त ये जो डिवाइस है ये था ही नहीं, तो इस डिवाइस से पैदा होने वाली समस्याएं भी नहीं थी, लेकिन अब ये डिवाइस है तो इससे पैदा होने वाली समस्याएं भी है। तनाव मुक्ति और नींद के लिए रात को देर तक मोबाइल देखना बंद कीजिए, 7 से 8 घंटे की पूरी और आरामदायक नींद लें, क्योंकि मानसिक तनाव बीपी का सबसे बड़ा दोस्त है।

0: और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए एक चीज़ और है जो है फूड। अब आप कहेंगे अभी तो नमक के बारे में कह रहे थे और अभी कह रहे हो फूड खा लो, ऐसा नहीं। आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, लेकिन महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जब भी आपको अच्छा लगे तो आप अपना मन पसंदीदा फूड भी ज़रूर खाएं, क्योंकि जो खाना होता है उसका संबंध हमारे दिमाग से हमारे मन से बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आप खुश रहते हैं। जीवन सिर्फ बैलेंस डाइट या दवाइयाँ लेने के लिए थोड़ी ना है, अच्छा खाना खाने के लिए भी है। तो अपने मनपसंद फूड ज़रूर खाएं लेकिन बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से थोड़ा बहुत।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: माधव, अभी हमने उच्च रक्तचाप की बात की और बाहर का तापमान देखकर मुझे एक और गंभीर चिंता सताने लगी। पता है कि मुझे अचानक याद आया कि कल हमारे ऑफिस में एक कलीग थे, वो अचानक ठंडे पानी के टब से हाथ पैर धो रहे थे, फिर कुछ देर में उनके शरीर का तापमान एकदम गिर गया और वे पूरी तरह कांपने लगे। ऐसा क्यों हुआ होगा भला?
3: भाई गीता, तुम तो ये कंडीशन अगर बिगड़ती तो ये बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी और बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती थी। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है, दरअसल इसे चिकित्सा विज्ञान में तापघात या हाइपोथर्मिया कह सकते हैं और शरीर के तापमान में अचानक आई भारी गिरावट भी इसको कहते हैं।
2: अच्छा माधव, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि अत्यधिक गर्मी से खून गाढ़ा होता है और बीपी बढ़ता है, तो फिर इस भीषण गर्मी में शरीर का तापमान अचानक गिर कैसे सकता है? ये तो बिल्कुल विपरीत बात हुई ना।
3: यही तो नेचर के लॉज है गीता। दरअसल जब कोई व्यक्ति अत्यधिक गर्मी से तपकर तुरंत एकदम ठंडे वातावरण में जाता है या बर्फीले पानी से नहा लेता है, तो शरीर का आंतरिक तापमान नियंत्रण तंत्र से पूरी तरह बाहर हो जाता है। यानी कि आपका जो इनर सिस्टम है, आपकी जो इनर बॉडी को रेगुलेट करने के लिए थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई इसको गर्म रखना है, ठंडा रखना है, मीडियम रखना है, कैसे रखना है।
2: मतलब गर्मी में जो नसें खून को ठंडा करने के लिए फैली हुई थी, वे अचानक अत्यधिक ठंडक के संपर्क में आते ही तेजी से सिकुड़ जाती है और इसके दिल पर अचानक अत्यधिक दबाव पड़ता है। बीपी के मरीजों के लिए ये स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इससे सीधे दिल का दौरा पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है।
3: बिल्कुल, और लोग ये भी सोचते हैं कि हाइपोथर्मिया सिर्फ बर्फीले पहाड़ों या सर्दियों में होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है दोस्तों। गर्मियों में एयर कंडीशनर का तापमान 16 से 18 डिग्री रखने पर भी ये हो सकता है, क्योंकि जब आप इतने ठंडे माहौल से निकल के सीधे बाहर जाएंगे, गर्मी में जाएंगे, तो आपको थर्मल शॉक आपकी बॉडी में पैदा हो सकता है, जिससे आपको ये अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है।
2: पर अभी ये तुम बताओ कि तापघात के मुख्य कारण तो ठीक है, लेकिन इसको जानना हमारे लिए इतना भी महत्वपूर्ण क्यों है?
3: ये इसलिए ज़रूरी है गीता, क्योंकि मानव शरीर केवल 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सही कसे काम कर सकता है। यदि तापमान इससे नीचे गिरता है तो दिल, फेफड़े, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है और शरीर का तापमान गिरने से खून का प्रवाह भी धीमे हो जाता है, जिससे अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और इवेंचुअली आपकी बॉडी कन्फ्यूज हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं।
2: और दोस्तों, इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए हम अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जब भी हम तेज धूप से घर के अंदर आए तो तुरंत एसी के सामने या कूलर के सामने मत बैठिए, ना ही तुरंत फ्रिज का पानी पिए। कम से कम 10-15 मिनट पंखे की हवा खाइए, ताकि शरीर में के जो तापमान है उसको हम सामान्य कर सके और उसके बाद ही मटके का या फ्रिज का पानी पीना चाहिए।
3: बिल्कुल, और इसके साथ एसी जो हमारे घर में होते हैं गीता, उसका तापमान भी हम 24 से 26 तक ही रखें, ताकि ये थर्मल शॉक के जो तरीके हैं वो बहुत कम हो जाए।
2: बिल्कुल, और यदि हमारे सामने किसी व्यक्ति का शरीर अचानक ठंडा पड़ जाए और वो कांपने लगे, तो उसे तुरंत गर्म कपड़े या कंबल से लपेटे और उसे सीधे हीटर के सामने लेकर आए, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर को सामान्य तापमान पर लाना चाहिए और उसे पीने के लिए गुनगुना या फिर मीठा पानी देना चाहिए।
3: बिल्कुल, और इस बारे में अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताएं दोस्तों, क्योंकि अक्सर लोग एसी से डायरेक्ट गर्मी में चले जाते हैं और गर्मी से घर आते ही डायरेक्ट ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो इसके बारे में आप सबको बताएं, ताकि जो ये थर्मल शॉक के कॉजेज हैं उसको कम किया जा सके।

0: गीता, इस बार की जो गर्मी है दोस्तों वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ रही है। और होता ही है, हर साल हमें ये लगता है कि उस साल की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इस बार वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों और युवाओं के लिए जो समर वेकेशंस हैं, यानी कि जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, वो भी शुरू होने वाली है। और ऐसे में इस भीषण गर्मी को झेलते हुए मन में बस एक ही ख्याल आता है बच्चों को देख करके, भी बडंकी जो कोई प्यारी सी जगह मिल जाए जहाँ पर हम घूमने जा सकें।
1: बिल्कुल, कि ये जो तपस है उसे दूर किसी ठंडे, बेहद ठंडे और खूबसूरत जगह की सैर की जाए, जहाँ पे सिर्फ बर्फ की चादर हो और सुकून देने वाली ठंडी हवाएं हो।
0: बिल्कुल, और दोस्तों इस मौसम में पहाड़ों की याद आना बहुत स्वाभाविक है। जब भी आप किसी ठंडी जगह जाने की बात कर रहे हो या आपका जाने का मन हो, तो आपके दिमाग में कौन सी जगह आती है? मुझे लगता है गीता तुम्हारे दिमाग में थोड़े दिनों पहले तुम एक जगह की बात करी थी हिल स्टेशन की, वो कौन सी जगह थी?
1: बिल्कुल, वो जगह है जहाँ पे सिर्फ बर्फीली चोटियाँ ही नहीं, बल्कि वहाँ की जो वादियाँ है उसमें मखमली सफ़ेद रेत का एक ठंडा रेगिस्तान भी है, और वहाँ दो कुबड़ वाले अनोखे ऊँट भी घूमते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ?
0: तुम डेफिनेटली नुब्रा वैली की बात कर रही हो गीता, और ये नुब्रा वैली काफ़ी फेमस है। हालांकि इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है और रेगिस्तान है। ऊँट की भी एक विशेष प्रजाति यहाँ पर मिलती है।
1: बिल्कुल, और ये उत्सुकता वाली बात है कि इतनी ऊंचाई पर ये रेगिस्तान कैसे बना और आखिर इस जगह के बारे में जानना ज़रूरी भी क्यों है?
0: इसका मेन कारण है दोस्तों नुब्रा घाटी का महत्व। अगर की हम बात करें तो सिर्फ उसकी अलौकिक

0: में नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे भौगोलिक और स्ट्रेटेजिक कारण है। दरअसल नुब्रा घाटी भारत, पाकिस्तान और चीन के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स के बहुत पास में करीब स्थित है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा और कठिन युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर इसी नुब्रा घाटी के ठीक हम कह सकते हैं नॉर्थ के अंदर सिचुएटेड है। और हमारी भारतीय सेना के लिए घाटी देश की सुरक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।
1: बिल्कुल, ये तो हमारे देश का बेहद गौरवशाली हिस्सा भी है। प्राचीन काल में ये घाटी भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग यानी सिल्क रूट का भी एक मुख्य केंद्र था।
0: बिल्कुल दोस्तों, यहाँ नुब्रा और शोक नदियाँ भी आपस में मिलती है। शोक नदियों को मृत्यु की नदी पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि ऐसा लगता था जो उसको पार करने जाएगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और नुब्रा घाटी की जो हुंडर गांव है उसमें सफ़ेद रेत के ऊंचीले ऊंचे टीले भी हैं और वहां पाए जाने वाले जो ऊंट है उनकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं और पूरे भारत में एक दुर्लभ प्रजाति है जो सिर्फ यहीं मिलती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ साथ नुब्रा घाटी जाने के लिए अगर आपका मन हो तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक खारदुंगला से आपको गुजरना पड़ता है जो कि समुद्र तल से लगभग 17,582 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नुब्रा घाटी के बारे में एक चीज़ और काफ़ी फेमस है दोस्तों कि वहाँ पर रात के समय में आपको आसमान के अंदर रंग बिरंगी रोशनियाँ दिखाई देती है क्योंकि दरअसल ये जिस एंगल पे सिचुएटेड है लद्दाख के अंदर, वहाँ से आसमान के अंदर आपको रात को जो मिल्की वे गैलेक्सीज होती है वो बहुत अच्छे से विजिबल होती है, तो वहाँ जाने में आपको बहुत मज़ा आएगा।
1: दोस्तों, ये जगह सचमुच धरती का स्वर्ग है, लेकिन एक जिम्मेदार पर्यटक होने के नाते हम युवाओं के कुछ नियमों को पालन भी करना पड़ता है। वहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलें या फिर चिप्स के पैकेट पहाड़ों पर नहीं फेंकने चाहिए। अपनी खुद की रीयूजेबल बोतल साथ में रखनी चाहिए और बड़े होटलों के बजाय वहाँ के स्थानीय लोगों के होमस्टे में रुके, और इससे वहाँ की जो ग्रामीणों हैं ग्रामीण हैं उनको सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं मिलेगी, उन हम वहाँ की जो संस्कृति है उसको भी करीब से जान पाएंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, और बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखें क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करना, बूस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे दो सवाल पूछे थे दोस्तों, आइए उन सवालों के जवाब जानते हैं कि आपने हमने उसके जो जवाब हैं वो सही ढूंढे हैं या नहीं। हमारा आपसे पहला सवाल था कि इस 5G या 6G नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले अक्षर जी का फुल फॉर्म सिर्फ एक शब्द में क्या होता है,
1: और दोस्तों इसका जवाब है जनरेशन। और दूसरा सवाल था कि हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप ने दृष्टि नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था, और इसका जवाब है गैलेक्स आई।
0: बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके जवाब सही निकले हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक गवर्नमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है ऑनलाइन, और आपको इस पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है
1: और इसकी दिनांक है 12 मई से लेकर 11 जून तक
0: और नंबर ऑफ पोस्ट होने वाली है 1191। तो कोशिश करें कि आप पढ़ते रहें और अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इसके लिए अच्छे से सारी छानबीन करके अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप पढ़ाई के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि लू का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस दौरान आप कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं जैसे ठंडे पानी का सेवन करें, छायादार जो जगह है वहाँ रहें, दोपहर के अंदर अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। इसके साथ साथ अगर आपको लू लग जाए तो स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है आप उनका लगातार पालन करें, ठंडी चीज़ों का सेवन करें और तुरंत तापमान को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और क्योंकि ये एक सीरियस सिचुएशन होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के परामर्श के लिए आप अस्पताल जाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ दोस्तों उम्मीद है हमारे आज के कार्यक्रम में हमने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ जो इंसान के लिए मानव के लिए है वो है प्रेम, तो इन सब के दौरान लगातार सीखते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन अपने अंदर प्रेम को भी जागृत रखें क्योंकि प्रेम एकमात्र ऐसी वस्तु है जो इंसान को इंसान बनाती है और दूसरे प्राणियों से भिन्न करती है। उम्मीद है आपका कार्यक्रम अच्छा रहा होगा। खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, परिवार का ख्याल रखते रहें, वनस्पतियों का ख्याल रखते रहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोताओं ने सुना अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:55 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोतो, आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोता, हमारे दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक आप लीजिएगा लुत्फ शास्त्रीय संगीत का, रात्रि 10 बजे से।

श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में यानी कि संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत का लुत्फ आप फिर से ले पाएंगे रात्रि 8:00 और उसके बाद में 9:15 पर भी फिल्म संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण होगा। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 का। ये कार्यक्रम हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित करेंगे। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 7:45 पर और लोक संगीत आप सुन सकेंगे 8:30 पर। ग्रामीण जगत का प्रसारण हमेशा की तरह 7:00। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेंगे रसायन मुक्त खेती, अच्छी उपज के लिए खेती की अच्छी तैयारी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और लोकगीत के साथ मौसम की जानकारी और समर्थन मूल्य की जानकारी तो होगी कार्यक्रम ग्रामीण जगत में 7:00 से।

श्रोताओं, ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री

0: उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जिसमें आज विशेषता है एक ही कलाकार, और आज हमारे जो कलाकार हैं वो यूं तो एक है पर वास्तव में हैं दो, वो हैं जतिन ललित। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगीतकार जतिन ललित। उन्होंने बेहतरीन गीत हमें दिए हैं और

हम शुरुआत करने जा रहे हैं उनके फिल्म यस बॉस के इस गीत के साथ। अभिजीत की है इस पे आवाज़ और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, आप सुनते हैं जतिन ललित साहब के संगीतबद्ध किया हुआ फिल्मी दुनिया का पहला गीत, यानी कि उनकी पहली फिल्म। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। पहला गीत और पहले प्यार का जो कसक होती है, वो सारी इसमें इन्होंने झोंक दी है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और मीठी सी आवाज़ें उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की है। तो सुनते हैं।

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, जतिन ललित के मधुर संगीत से सजी धुनों का ये कारवा आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जतिन ललित का मतलब है मेलोडी। अगर कोई भी गीत, चाहे किसी भी जोनर का वो गाना हो, उसमें मेलोडी कंपलसरी है। और पराकाष्ठा जो होती है संगीत में मेलोडी की, वो किसी गीत में अगर आ जाए तो वो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जी हाँ, 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर, इसमें एक ऐसा गीत जिसने न केवल उस दौर के युवाओं को बल्कि संगीत के हर पारखी को अपना दीवाना बनाया। उदित नारायण और साधना संगम की मधुर आवाज़ है। क्या गायकी थी, ऐसी गायकी जिसके लिए खुद लता मंगेशकर ने कहा था कि अगर उदित नारायण को इस गीत के लिए अगर कोई अवार्ड ना मिले तो कोई मतलब ही नहीं किसी अवार्ड का। तो ऐसा गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा इसे, और अमर संगीत जो पियानो की हर एक धुन दिल की धड़कन जैसी आपको लगेगी। और ये गीत मतलब एक सामान्य गीत नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन के उस खूबसूरत एहसास की याद है जिसने हम अपनी पहली मोहब्बत, पहला प्यार, पहला एहसास कहते हैं। तो सुनते हैं आकाशवाणी बीकानेर पर आज जतिन ललित की जादुई दुनिया से सदाबहार गीत पहला नशा पहला खुमार।

श्रोताओं, बात करते हैं कुछ कुछ होता है फिल्म की। साल 1998 में जतिन ललित के संगीत से सजी एक फिल्म आई, और इसके जो टाइटल ट्रैक है की बात करें, उसमें जो मासूमियत है, जो प्रेम की मीठी गुदगुदी और कशिश है, उसे आज भी महसूस कर सकते हैं। समीर के लिखे और उदित नयन और अलका याग्निक के गाए बेहतरीन गीत मिश्री घोलते हुए इस गीत को सुनने हम जा रहे हैं। जतिन ललित ने इस गीत में जो पियानो का पीस डाला है, जो कमाल है अपने आप में, और उसके साथ भारतीय जो संगीत है उसका मिश्रण है जो छू लेता है दिल को। आज के इस फिल्मी सफ़र की आखिरी प्रस्तुति के रूप में सुनते हैं प्यार के इस खूबसूरत एहसास को, यानी कि कुछ कुछ होता है।

कुछ कुछ होता है के इसी गीत के साथ जतिन ललित के संगीत से सजा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर अब से कुछ ही देर पहले गोथेनबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, तकनीक

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। वहीं कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिव कुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
2: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रधान की आवश्यकता ये भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां
0: देश। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने गांव और गरीब लोगों के लिए काम करना नए भारत के निर्माण की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 नव चयनित अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनितों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज सुनने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान किया। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया गया। इसमें जेईई मेंस में क्वालिफाई करने वाले 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आईआईटी रुड़की की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चांदी की कई श्रेणियों से फ्री सूची से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इन पाबंदियों के कारण अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी आयातक या जेवरात कारोबारी विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा। गैर जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
3: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है।

0: जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बीकानेर रेलवे स्टेशन से अपने आवास तक का सफर ई रिक्शा से तय कर ईंधन बचत का संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आज जोधपुर में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
2: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है, आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
1: इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश भी मौजूद रहे। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राज्य के सभी संग्रहालयों तथा स्मारकों में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश मुक्त रखा गया है। वहीं इससे एक दिन पहले आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक रखी गई है। इसके जरिए शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में कल दिल्ली एम्स की टीम ने कोटा का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट अब पेश की जाएगी। इस बीच अब तक 16 से अधिक महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले सामने आ चुके हैं। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार रहस्यमय संक्रमण से अब तक 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर रखे गए। इनमें विशेषज्ञों ने लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भी शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू ने लोगों को उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज नहीं करवाने पर इससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
3: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच पीडी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
1: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के ASI सुनील विश्नोई को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ACB के अतिरिक्त SP अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी ने ये राशि दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी। राज्य में बीते सप्ताह से मौसम में जारी उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच गर्मी का असर फिर से तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी तथा हीट वेव का प्रकोप रहने के आसार जताए हैं। विभाग ने आज भी 8 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल आने की संभावना है। पश्चिम जिलों में लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस बीच बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है और रातें भी काफी गर्म दर्ज की जा रही हैं। वहीं करौली में आज दिन का तापमान 45 डिग्री के पार मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफल आयोजन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ. पवन कुमार पारीक ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निशांत जैन करेंगे और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन कर कार्यक्रम के सफल संचालन, योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा योग प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी तय की गई है। डॉक्टर पारीक ने बताया कि जनमानस में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 2 मई से 20 जून तक 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान के तहत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर योग विषयक व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी ऑर्थोबायोलॉजिकल रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक कोटे से ये राशि मंजूर करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक संसाधनों के विस्तार के लिए ये कार्य महत्वपूर्ण होगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और शोध तथा उपचार कार्यों को मजबूती मिलेगी। जिले में स्कूली विद्यार्थियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और राजस्थानी पुस्तकों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी पुस्तकालय में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए फ्लैग्स तथा प्रदर्शनी लगाई गई है। अकादमी के सचिव शरद केवलिया ने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 14,000 पुस्तकों के संबंध में विद्यार्थियों को बताते हुए राजस्थानी में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीकानेर में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान के जरिए आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये विकास रथ जिले के गांवों और ढाणियों तक पहुंचे, जहां पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। ये अभियान कल संपन्न हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से राज्य सरकार आम जन के द्वार तक पहुंचकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ देती रहेगी। बीते दिनों जिले के 40 सरकारी विद्यालयों में इंटरैक्टिव पैनल और ड्यूल डेस्क वितरण कार्यक्रम रखा गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हुड़को द्वारा CSR के तहत दी गई ये सामग्री बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। हुड़को द्वारा 25 करोड़ रुपए की लागत से सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे इन विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर को योजना के जिला नोडल अधिकारी और आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खेचड़ ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2026-2027 के लिए जिले से 10,55,45,000 रुपए के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करने और व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जूनागढ़ के सामने स्थित शिखरबंद महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में प्रसाद वितरण, फूलों की रंगोली और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा।

0: प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार एर रक्षा समेत दूजा हलका माए आपसी सहयोग माथे बतल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम माए भागीदारी तय करन री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाई जा। समाचारों रे साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन री दो दिन री यात्रा माथे कुछ देर पहला गोथेनबर्ग पुग्या। हवाई अड्डा माथे स्वीडन रा प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री श्री मोदी री अगुवाई करी। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वीडन रा प्रधानमंत्री रे साथ है कारोबार तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सप्लाई कड़ी रक्षा अंतरिक्ष जलवायु परिवर्तन नियंत्रण माथे बतल करेला। दोनों नेता यूरोपीय आयोग री अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन रे साथे यूरोपियन उद्योग गोलमेज सम्मेलन माए बोलेला। आ प्रधानमंत्री श्री मोदी री संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा रो तीजो चरण है। वठे काले आपरी यात्रा रा दूजा चरण माए भारत और नीदरलैंड्स आपरा हिता ने सामरिक थर माथे ले जार 17 करार करिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप टेक्नोलॉजी भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार वेला। आज अहमदाबाद माए मिलियन माइंड्स टेक पार्क रा पहला चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस रो उद्घाटन करता वणा कहो कि भारत दुनिया रा हर उभरता हलका माए अगवा बन गयो है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय हलका कोटा बूंदी रा दौरा माथे पुग्या। वणा कोटा माए भीम राजपूत हॉस्टल माए राजमाता शिव कुमारी बालिका हॉस्टल री नींव धरी। ई मौके श्री बिरला कहो कि शिक्षा हुई समाज माए सकारात्मक बदलाव लाए जा सके है। वणा बालिका शिक्षा रा प्रसार सारू खास कोशिश करण माथे जोरी दियो।
2: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन समाज की आवश्यकता ये है भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली बेटियां
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रशासनिक ओहदा माथे चुनिजा एहलकारों पिछड़ा और कमजोर तबका लोगों ने समस्यावां ने निपटावण सारू खास ध्यान रखने री बात कही है। वणा गांव और गरीब लोगों सारू काम करनो नुआ भारत ने बनाने री प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर माए प्रतिभा सम्मान जलसा माए बोल रहा हा। ई कार्यक्रम माए भारतीय प्रशासनिक सेवा रा 3 नुआ चुनिजा एहलकार और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद रा 59 नुआ नियुक्त एहलकारा रो सम्मानी करी जियो। राज्यपाल आखिरी छेड़ा रा मिनखरी आवाज सुनने और चुनी जा जन नुमाइंदा रे साथे चोखा व्यवहार करन री अर्ज करी। देश रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान माए भर्ती सारू होण वाली JEE एडवांस परीक्षा 2026 रो आज आयोजन करी जियो। इन माए JEE मेन्स माए कामयाब रहण वाला 2.5 लाख पढ़ेसर भेड़ा विया। IIT रुड़की का न्यू आ परीक्षा कराई जी ही कंप्यूटरी मार्फत आ परीक्षा दो पारियां मायवी। केंद्र सरकार चांदी रा आयात माथे रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का न्यू जारी अधिसूचना मुजब चांदी ने कई वर्गारी फ्री

0: सूची मामू हटार इनने प्रतिबंध वाली सूची माए डाल दी जा है। आ पाबंदियां रे कारण अबे बिना सरकारी मंजूरी रे कोई आयात या जेवरात कारोबारी विदेशों चांदी रो आयात नहीं कर सकेला। गैर जरूरी आयात ने कम करण और विदेशी मुद्रा रा खर्च माथे लगाम लगाउन सारू ओ कदम उठाई जो है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माते AIR News Rajasthan माते सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माते ही समाचार सुन सको हो और वहाँ जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री ईंधन बचाने री मुहिम में जन नुमाइंदा अहलकार और लोग ही आपरी भागीदारी तय कर रहा है। ई कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर अजमेर रो सफर रेलगाड़ियों पूरो करियो। ई दौरान वणा यात्रुआ रे साथे बतल करने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अपनाउन री अर्जी करी।
1: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाली बीकानेर रेलवे स्टेशन आपरा रहवास ताई रो सफर ई रिक्शाओं तय करने ईंधन बचाने रो संदेश दियो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेली आज जोधपुर में लोगों पेट्रोल डीजल ने किफायती काम में लेवन री अर्ज करी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज आमेर महल ने देखा, वणा महल परिसर में चल रहा विकास और संरक्षण रा काम रो जायजो लियो। सैलानियारी बदती आवक न देखना मुख्य सचिव आमेर ताई पुगण वाला मार्ग ने और बेहतर बनावन रा निर्देश दिया। वणा डिजिटल संग्रहालय और गाइड सिखावण ने लेर एहलकारा ने जरूरी निर्देश दिया। ई दौरान पुरातत्व महकमा रा निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेशी मौजूद रिया।
2: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क IGNCA के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: हर साल 18 महीने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जावे है। इन रो मकसद संग्रहालयों री मार्फत सांस्कृतिक लेन देन और आपसी समझ ने बढ़ावो देवनो है। ई मौके राज्य रा सगला संग्रहालय और स्मारक में आवण वाला सगला सारू प्रवेश मुफ्त राखी जो है। वठे इनु एक दिन पहला आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक राखी जी। इन री मार्फत शहर री धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रे प्रति जाग जगावण और उनरा संरक्षण रो संदेश दिरीजो। कोटा में प्रसूतामारी मौत और किडनी फेल होने रा मामला में काले दिल्ली एम्स री टीम कोटा रो दौरो करियो। इन री जांच रिपोर्ट अबे पेश करी जायला। ई बीच अजे ताई 16 32 महिलाओं री किडनी खराब होने रा मामला सामी आ चुका है। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता इलाज रे दौरान दम तोड़ दियो। ई रहस्य वाली संक्रमण अजे ताई 5 प्रसूतावां री मौत वह चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारा न्यारे ठोड़ा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गया। आम आए विशेषज्ञ लोगों रा ब्लड प्रेशर की जांच करी और इणु होने वाला नुकसान रा बारा में जानकारी दी। ई कड़ी में झुंझुनू रा BDK अस्पताल में ही शिविर लगाई गयो। ई मौके PMO डॉक्टर जितेंद्र भामू लोगों ने BPU होने वाला बुरा नतीजा की जानकारी दी। वणा कहो कि भगत माथे इलाज नहीं करावण माथे इणु कई चिंताजोग स्वास्थ्य समस्याओं रो सामनो करनो पड़ सके है।
3: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक BP है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच PDK अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB उदयपुरा प्रतापनगर थाना रा ASI सुनील विश्नोई ने 1 लाख रुपया की घूस लेवता

0: गिरफ्तार किया है। एसी बिरा अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार बतायो के आरोपी आ रकम दुष्कर्म री कोशिश और छेड़छाड़ रा मामला में मुकदमो दर्ज नहीं करने री एवज में मांगी ही। बालोतरा कने आज एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुएगी। दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस वे माते हुई। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश बतायो के एक तेज रफ्तार कार रे बेकाबू वेर पलट जावणु उन माए सवार 3 लोगों मौका माथे दम तोड़ दियो, वठे 3 दूजा गहरा घायल हुए गया। ए लोग गुजरात रा बनासकांठा जिला रा धानेरा गांव रा रहवासी बताया जावे। उठीने अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माथे नागौर जिला रा चकढाणी गांव में एक कार और रोडवेज बस री टक्कर वेगी, जिनमें 4 लोगों री मौत वेगी और 4 गहरा घायल वे गया। उठीने पाली जिला रा देसूरी हल्का में घाणेराव गांव में दूषित भोजन काम में लेवणु 11 लोगों की तबियत बिगड़ गई, वहां रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करायो जावे। नाबे मौसम राज्य में लाडला हफ्ताओं मौसम में चादरों उतार चढ़ाव और बदलाव रे बीच गर्मी रो असर फिर तेज होवन लाग्यो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में तापमान में और बढ़वार और हीटवेव रो असर रहने रा आसार जताया है। महकमो आज ही 8 जिला में लू रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। दिन और रात रा तापमान में उछाल आवण री आस है। आथुणी और आथुणी अगुणी जिला में लू रो सबू 32 असर देखियो जावे। ई बीच बीकानेर चूरू बाड़मेर और जैसलमेर में करड़ी गर्मी रो दौर चाल रियो है और रात में घनी गर्मी दर्ज करी जावे। वठई करौली में आज दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार ना पीजियो। डीग जिला में खेती महकमा कानू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलायो जावे। 15 जुलाई तक चालन वाला ई अभियान रे तहत खेती महकमा री टीमा दुकाना और खाद बीज और कीटनाशका रा नमूना भेड़ा करेला, इनने प्रयोगशाला में भेजने वाली गुणवत्ता जांची जायला। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक और फेरू सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हल्का में आपसी सहयोग माथे बातल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करने री अर्ज करी और विश्व रक्तदान दिवस मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाया। नेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारू चैनल है। संध्या के 7 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम री उड़ीक राखणिया सगड़ा हेताड़ू भाया ने अरबाया ने मां लोगारा घणा घणा राम राम सा। मैं हूं आपरे सागे बजरंग सारस्वत
1: और मैं हूं आपरे सागे संदीप पारिक।
0: संदीप भाई आपने भी मारा मोकड़ा मोकड़ा रामा श्याम
1: भाई रामा श्यामा बजरंग भाई। देखो थार तो नाम में ही बजरंग बाबा है, है? तो थारू तो रामा श्यामा करने को जो आनंद है नी वो थोड़ो अलग ही है।
0: संदीप भाई आ है पहचान, मिनखरी पहचान है के बिना काई नाम बतलावे।
1: चोखी बात थे खुद ने मिनक कहो आ तो बहुत ही बढ़िया बात। और देखो सर बजरंग भाई यहाँ है कि आपरा जका विचार है, आपरी जकी सोच है, आपरा जका काम है नी वे वास्तव में ही लायक है कि आप मिनखा की श्रेणी में आओ।
0: बिल्कुल सर। तो आपरा माइत भगवान नाम माथे, महापुरुषा नाम माथे, विद्वान नाम माथे, आपरे बालका ना नाम राखता है, सोचता बारा जिका संस्कार है, गुण है, बे आर मायने भी आवेला, तो आज जकी है आ पहचान है।
1: बिल्कुल। और एक चीज और है देखो बजरंग भाई, जो कि आप बात करा चौपाल मावानी,

0: तो बाद में बात आगू आके निकल बोकर है। अब देखो आज की सोच की बात तो थे नहीं, अपना जगह माई था वे इन प्रकार नाम राखता कि भी अंत समय में जो पुकारा भी नहीं तो मालिक को नाम जो है वो जबान पर आवे।
1: बिल्कुल सा बिल्कुल, तो आ भाज की जबान पर अवे। पर संदीप भाई अबार लोगारी जबान माथे लोगारी की आंखियां उगड़ी है और जबान जबान माथे नाम आ रही है कि जेकी जैविक खेती है या पछे रसायन मुक्त खेती है बा होनी चाहिए। अबे सब भाई लोग हैं जी का जाग गया, आंखियां खुल गई बारी और खासो चेतो आयो है ए जेका रासायनिक उर्वरक है आऊ होनाड़ा नुकसान है बाने प्रति लोगारे मन में चेतना आई है और रसायन मुक्त खेती है या जैविक खेती है बीर प्रति लोगारो रुझान मोकड़ो बढ़ियो है।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखो आपा हाँ खेती बाड़ी से जुड़ेड़ा और देखो समझ तो आपा ने कहीं कम ही आपा ने जिया कहो भी आपा करता गया पर अब कहीं करें नहीं कोई एक ठोर आए कर बिंग पच्छ है आपा ने थोड़ो सो लारे मुड़ के देखने की दरकार हो है। अब देखा कि जट भाई लोगों का ने सिंचाई रा साधन है वे आपके हिसाब से अच्छी खेती बाड़ी लेने के लिए रसायन जका है वह चाहे खाद के रूप में हो या कीड़ा मकोड़ा से बचाव के लिए कीटनाशक काम में लेवे तो आ सगला का जो दुष्प्रभाव जका है नी बजरंग भाई वे अब देखने में आ रहा है। और धीरे धीरे किसान कई बार आपने या समझे भी मैं तो ठगी चुको भी जकी सुनो उगड़न आ रही जकी धरती माटी है नी बिंग जो स्वास्थ्य है वो अब आ चीज़ा सु धीरे धीरे वो खत्म सो होते जा रहे है। तो इन वास्ते अब नई धारणा जिकी है बा आ है कि आप फिर थोड़ सो रुक गए ठहरा विचार करा कि आप खेती बाड़ी सागे कठी कोई इन प्रकार व्यवहार तो नहीं कर रहा जिके अनजाना में आपने जो सोना देन आ रहा जिकी माटी है बा कठी खराब तो नहीं हो रही।
1: बिल्कुल संदीप भाई बिल्कुल साची कैसा गीत भी है एक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो मिनक ठोकर खाया पछे ही संभड़े। तो आपा इधर दुष्परिणाम देखिया है रसायन आली जी की उर्वरक आली आपा अंधाधुंध होड़ रहे मायने आपा आपारी माटी रो स्वास्थ्य है बिना कितो बिगाड़ दी और आपा कितो जहरीलो अनाज जको है रसायन सुप्रभावित अनाज है भी आपा सेवन कर रहे हैं पर जैविक खेती रो रसायन मुक्त खेती री कोई होड़ को नहीं बीर जी की उपज है बीरो अपर स्वास्थ्य माथे जिकवाचो प्रभाव पड़े हैं ये आ बात भी आपने चौकी तरह ध्यान पड़गी। तो अबे मोकड़ा भाई है बे इनका नी जागृत होर
0: बिल्कुल दिशा में मुड़ रही है। एक चीज और है देखो बजरंग भाई ज्यादा कोई पुरानी बात को नहीं पहली मान लो कोई टींड सी है कोई लोहिया है लियांता तो कहते अभी इकट्ठा गया बाड़ी गाय जैसे कहते बाड़ी गाय जो तो स्वाद को नहीं आपने बिरखा का वेड़ा हुआ नहीं तो बंग जो स्वाद बा अलग हुए पर अब आ चीज बिल्कुल खत्म होगी। अब तो है जेका है बंग जो स्वाद है नहीं वो पहली जिसो रहे को नहीं। और यहीं पर जो विचार करानी तो आपना जेका पूर्वज आ वास्तव में जेकी आप आज आप बात करानी जैविक खेती
1: हाँ जी
0: यही सुबह पहली जुड़े रहा वे देखो गोबर री खाद है या मींगनी है अंग उपयोग करता और कोई भी प्रकार रो केमिकल जो को है रसायन जो को है वो खेती बाड़ी में कौन लेता। हाँ उपज कम जरूर होती पर जिकी भी उपज होती बिम गुणवत्ता ही जिकी क्वालिटी की आप बात करानी बाही बा जो चीज़ खानता नहीं तो मिठास हो भी चीज़ में मान लो देसी बाजरी भी है नहीं तो बिंग जो खिजड़ो बनतो नहीं वो यहाँ खदबद करके जद सीज तो नहीं चूल्हा पर बजरंग भाई तो बिंग यहाँ फिदका सा दूर दूर तक उछलता। अरे आज जेकी शंकर बाजरा है बा चुपचाप कद पक जैठा ही कौन पड़े।
1: बिल्कुल संदीप भाई बिल्कुल साची बात कही कहीं मूंगफली स्वादरी बात है कहीं दूसरी उपजरी स्वादरी बात है सब रो स्वाद जिको आप जी हाँ बतायो स्वाद फुरकियो।
0: पर एक चीज है जीवन में स्वाद जो को है वो गीत संगीत सु आवे।
1: बिल्कुल था तो मैं उड़ीक राख रहे हूँ आप कोई सागिड़ो सो गीत लो या हरजत सुनाओ तो मैंने उड़ीक है
0: मन तो आवो कौन देखो बजरंग भाई थाना आवे या थे कोई चूड़ी बाजे में ले तो चढ़ो सुनो।
1: बिल्कुल बिल्कुल आओ सा सुना आपा कार्यक्रम रो पेलड़ो गीत।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: प्रस्तावना: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं

कि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु

0: बंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इसे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: तो संदीप भाई, ओहो हरजस राम मिलन कद होसी गांव नाड़ा सीमा मिश्र। तो बात चले ही रसायन मुक्त खेती री। तो आप जी यहाँ बतायो कि खेतरी माटी स्वस्थ होवेला तो अपर स्वास्थ्य भी अच्छो रहेला। सागे ही एक बात अब भी जरूरी है कि अच्छो उत्पादन जद होवेला, जद आपा खेतरी अच्छी तैयारी कराला तो अपने उपज भी अच्छी मिलेला।
2: बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अपन कोई आसरा बनाना होवे तो नींव जो की है वह अपन ने मजबूत रखनी होवे। और आई बात खेती बाड़ी में है कि जद जको भी जितो भी आपनो खेत है, बिंग जे आपा तैयारी अच्छी तरह से करा बुआई सु पहली। अब जी अभी मान लो आपा ने जुताई करनी है, अब वो गर्मी का मौसम है, इन मौसम में आपा ने गहरी जुताई करनी चाहिए। अब गहरी जुताई रो मतबल के है, मतबल वो है कि एक तो जमीन की जकी माटी है बा पोली हो जावे। पोली होने सु के है कि जका भी कोई हानिकारक जीव जंतु वगैरह है वह ऊपर आवे और तावड़ा सु खत्म हो जावे। तो जके सु आपनी बुआई जकी है बिंगो को जो काम है वो आसान हो जाया करे। दूसरी बात है कि पोली जमीन होने सु माटी में हवा को जो संचार है वो भी बढ़ जाया करे।
1: बिल्कुल संदीप भाई। और अब आने वाली 25 तारीख हूँ यानी 25 मई सु नवतपो भी शुरू हो रही है। तो नवतपे जो है वो खेती रे वास्ते एक वरदान है। अपा खेतरी गहरी जुताई करोड़ी रखा तो माटी पोली हो जावेला, बी में हवा रो संचार बढ़ जावेला और बीर मायने जिका छुपोड़ा जहरीला विषाणु कीट है जीव है वे नष्ट हो जावेला। और बीर बाद आपा जद खेतरी बुआई कराला तो आपा ने अच्छो मुनाफो मिलेला। सागे ही आपा खेतरे मायने जुताई रे पछे चोखी तरह सड़ोड़ी गोबरी खाद या पछे वर्मी कंपोस्ट जकी है बार गाल देवा और माटी में चोखी तरह मिल जावे तो आनंद ही आ जावे।
2: बिल्कुल सही बात है। और देखो जी, आप बात बताई गोबरी खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, तो कोई भी खाद जकी है बा आपा अपने घर में बाखड़ में या खेत में भी तैयार कर सका। पर ध्यान ही चीज रो रखा कि खाद जकी है देसी खाद जकी है बा कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप चोखी तरह से सड़ेड़ी नहीं होगी पिंग पछे की है कि बीमें इन प्रकार का कीड़ा मकोड़ा होगा जका कि आपनी फसल ने खराब कर देगा। और खास तौर से क्या हुआ, जब गोबर की खाद चोखी तरह सड़ेड़ी नहीं हुए तो दीमक रो जो को प्रकोप है वो खेत में हो जाया करे। और एक कर जो दीमक लाग गई नहीं था तो फिर छुटकारो पाणो बहुत दूर हो गए। तो इन चीज़ को ध्यान रखा कि गोबर की खाद जब भी काम में लेवा तो अच्छी तरह से सड़ेड़ी जकी है बा होनी चाहिए।
1: और संदीप भाई एक बात रो ध्यान आपने और रखना है, वह बात आ है कि आपा खेतरी अच्छी तैयारी करती वेला वो भी ध्यान रखा कि खेतरो आपा समतलीकरण कर देवा, यानी माटी जकी है खेत में ऊंची नीची नहीं होवे, कठई कोई चढ़ाई या नीचाण नहीं होवे। जब समतल करोड़ी एक सार माटी होवेला तो पानी री आपूर्ति जकी है बा हर पौधे तई आसानी होवेला, कठई पानी है वो भेड़ो नहीं होवेला और जकी सिंचाई है बा एक समान रूप से होवेला।
2: बिल्कुल सही बात है। और इन वास्ते कह रहे अभी पाटो लगाना जो को है वो घणो जरूरी है, ट्रैक्टर तो करायो जो को है वो भी आपा लगा सका। और इरो सो मोटो फायदो वो है कि एक तो पानी को जगह थे बतायो कि भी

0: इकट्ठी ज़्यादा भीड़ हो, इकट्ठी पानी लाग ही कौन पूग ही कौन पावे, तो इन समस्याओं छुटकारो मिले। और दूसरी बात आए कि जे मान लो आप खेत में नाइट्रोजन यूरिया ले रहे हैं या फास्फोरस ले रहे हैं, तो विंगो जो को वितरण है वो भी समान रूप से हो जब आपनों खेत जो है वो बिल्कुल समतल हो। तो इन चीज़ को आपने खास तौर से ध्यान रखना। और इन अलावा जब आप बुआई करानी बजरंग भाई,
1: हाँ जी,
0: तो खेत समतल हो नहीं तो लाइन से लाइन की दूरी है और पौधे से पौधे की जगह दूरी है वह भी आप बहुत अच्छी तरह से वो अंग्रेजी में कह रहे हैं मेंटेन कर सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, देखो मने यहाँ दिख रही है कि आप खेत जो है वो सांतरो हरियो भरियो है और नीमड़ेरा दरखत लागोड़ा है। तो बीरो आनंद ही न्यारो है जब आप थक जावा मेहनत करता तो नीमड़ेर नीचे बैठ भोजन करा आप जीमा या बिसुणी देवा तो आनंद ही आ जावे। बात चली नीमड़े री तो एक नीमड़े आड़ो संदीप भाई गीतर दो ले आयो हूँ तो सुनाऊ
0: सुनाओ सुनाओ
1: तो सुनो सा।

मैं आकाशवाणी हूं। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो शायद संदेश और संदेश में पहली भजन भाई, आप बहुत मीठो सो गीत सुन रहे हो, क्यों गायडो हो?
3: इन्हें गाँव नड़ा है चंद्रशेखर कल्ला और साथी।
2: बहुत ही मीठो गीत,
3: खड़ी नीम के नीचे
2: हाँ।
3: तो बहुत ही बढ़िया सा गीत लहोर। संदीप भाई, खेत में नीमड़ा जद होवेला, उपज चोखी होवेला, अपारे आसे पासे हरियाली चोखी वेला, जद आपा पानी री कीमत ने समझाला।
2: बिल्कुल सच्ची बात। और देखो कह रहे कि पानी बिन सब सुन, और हिंदी में कह रहे जल है तो कल है।
3: बिल्कुल सर।
2: तो ऐ बात जी की आपस में जुड़ेड़ी है और दरकार इन चीज रही है। और आजकल तो देखो सा दरकार और ज़्यादा होगी, क्योंकि गांव छोड़ छोड़ आपस शहर में बसन लग गया। और गांव में

0: कभी कुआं हा, बावड़ी ही, तालाब हा, बह सगड़ा जका है अब पहले जैसा रहा कोनी, और नए बांगी देखभाल जकी है, सार संभाल जकी है बा अब हो रही है। तो दरकार ई चीज क्यों, देखो तिस तो लागे बजरंग भाई,
1: बिल्कुल सबने लागे,
0: बिल्कुल चाहे मिनक हो, जीव जिनावर हो, चिड़िया हो, की भी हो, अतिश तो सगड़ा लागे। और अब बार देखो जहाँ गर्मी पड़ रही है, लू चाल रही है, इस मौसम में तो फिर आपने महसूस हो कि भी पानी बिना तो सरे कोनी, रोटी खाए बिना आदमी दो चार दिन काट सके, पर पानी बिना तो देखो सा सरे कानी।
1: बिल्कुल आप व्रत उपवास भी रखा तो जो अनाज है बीरो तो त्याग करी जाए, पर पानी रो त्याग कोनी करी जाए नहीं। पानी आपारे जीवन रो आधार है, इन आधार री कीमत आपा समझा, आपारे सरकार इन पानी री कीमत ने समझी, सहेजन सारू आपा लोगों ने समझावण देवण, बोलावण देवण सारू एक अभियान चलायो जिनरो नाम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओ जो को अभियान में क्या काई हुआ बजरंग भाई?
1: ई अभियान रो मुख्य उद्देश्य है कि गांव रो पानी गांव में ही रेवे, और अपारी सूखी धरती है, बीरी आपा प्यास बुझा सका, बिरखा रो पानी है, दूजो तमाम पानी है, बीऊ आपा भूमि रिचार्ज करा, या बिरखा रे पानी ने भेड़ो करा, या अपारे पानी रे जिका स्रोत है बारी साफ सफाई, नुआ एनिकट रो निर्माण, मेड़बंदी, सागे ही बिरखा रे पानी ने सहेजन सारू फार्म पौंड अरे टांका रो निर्माण सारू भी अच्छा जतन प्रयास करया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है बजरंग भाई। देखो इन प्रकार का जब प्रयास होगा नहीं, जद ही आपने जमीन में जो को पानी है बिंगो स्तर जो को है वो ऊंचो आओगे नहीं, तो आपने देखा कि अब तो 200, 250, 300, 400 फुट तक कुआं खुदावा नहीं तो ये पानी बहुत मुश्किल मिल रहा है। और इनकी वजह आई है कि पानी को दोहन जो को है वो ज़्यादा हो गयो, लेकिन पानी पाछो जमीन में माटी में खोनी जा रही हो। इन वास्ते देखो एक चीज़ आप देखी होगी कि शहर में भी अब जब कोई भी मकान वगैरह बना हुआ है तो बटा अनिवार्य शर्त हो रही है कि भी आपने छात को जो को पानी है वो भेड़ो करने की तजवीज जकी है बा मकान मालिक ने करनी घनी जरूरी है। और इनके पीछे सोच आई है कि पानी जिको भी बरसात को है वो न फालतू ढोले नहीं, वो चाहे आपा घर में कुंड बना के भेड़ो करा, या गांव में बावड़ियाँ जगह है पाई साज सवाल करा के करा, और जो खेत है तो खेत में भी बिना भेड़ा करने की तजबीज जकी है बा होनी घनी जरूरी है। और इनमें देखो आपने गांव का जगह लोग बाग है, किसान जगह है, बाकी भागीदारी जकी है बात तो सू बड़ी है।
1: बिल्कुल ओ जन अभियान है, जब ती आपा सगड़ा मिल आसे पासे का जल स्त्रोत है बारी रक्षा नहीं करा, बारी सार संभाल नहीं करा, जित और पानी की बर्बादी ने नहीं रोकाला, जिते ताई अपने सफलता मिलेला कोनी। तो जरूरी ओ है इन अभियान ने सफल बनावा, आपने जिया भी निर्देश दई जे है, जिया आपाऊ आस रखी जे है, बीर पर आपा खरा उतरा और जल स्वावलंबी गांव बनावन सारू आपा प्रयास करा, पानी की बूंद बूंद की कीमत समझा। संदीप भाई पानी बचेला तो ही आपारो भविष्य बचेला।
0: बिल्कुल, और एक चीज और भी आपा ध्यान रखा बजरंग भाई कि पानी सहजनों को प्रयास तो आपा करा, पर आज की गर्मी पड़ रही है इनमें जिका जीव जिनावर है बांग लिए भी पानी की पूरी व्यवस्था पर रखा, ताकि बांग अभी कंठ जका है बतीसा नहीं रवे।
1: बिल्कुल साहब, मूक जिनावर है, बोल कोने सके नहीं, बारी पीड़ है बा आपा नहीं समझनी है, तो आपारे आसे पासे रोई में, गोचर में, ओरण में, जठे कठे भी पानी की खेड़ा बनोड़ी है, पानी रा कुंडा है पक्षियां रा वास्ते, बा सब ने पानी बराबर भरना है, नजर रखनी है, आपारे गांव रे मायने टोला बनावना है, ग्रुप बना आपने वो काम करना है, और आपारे घर री छात माथे चिड़ी कमेड़ा वास्ते भी पानी रो कुंडो रखना है, फिर भी समय समय पर सफाई और भी ने पाछो पानी भरना है।
0: और देखो बातचीत तो आगे बजरंग भाई और भी करांगा, पर बीस पहली अब कौन सो गीत संगीत जो को है वो आप ले आया हो बताओ।
1: संदीप भाई हरे हरे बागारी बात चल रही है तो गीतर लो भी मैं हरा हरा बागारा ही राया हूं सा, लगा दो हरिया बागड़ो गीत है गावेला नीलम माथुर।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਗੀਤਰ ਲੋ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰੀ ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਖੇਤ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਗੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਸਵਾਵਲੰਬਨ ਅਭਿਆਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਔਰ ਘਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਵਤਾ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਸਵੱਛਤਾ ਜਕੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਣੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਲਾ ਤੋ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸਥਯ ਉੱਤਮ ਰਹੇਲਾ, ਕਾਮ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾਗੇਲਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਂਤਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਮੁਕਤ ਰਹੇ, ਆਪਾਰੇ ਕਾਮ ਨੇ ਚੋਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਲਾ, ਖਰਚੋ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇਲਾ ਅਨਾਵਸ਼ਕ, ਔਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆ ਰਹੇਲਾ।
1: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है बजरंग भाई। देखो कह करें कि विकास के सागे सागे कई इन प्रकार की चीज़ें जेकी है वह भी सागे आ जावे जेकी पछे आपने दुख देवे। आजकल आप देखा कि गांव में पहली पानी की व्यवस्था को नहीं होती, आजकल टूंटियाँ भी लागेड़ी है और टाइम सर पानी भी जुको है, वो गाँव में पहली की बनस्पत अच्छी व्यवस्था हुईड़ी है। पर सागे सागे आप देखा कि जिगह जिगह कादा कीच रवे, आ चीज़ पहली को नहीं होती। अब वो कादा कीच रहने सुखी है कि पहली आपने देखो बुजुर्ग कहवे है कि गांव में ये डांस जगह कह मच्छर जगह हुआ है, मच्छर को नहीं होता, अब गांव में भी मच्छर हुआ है। और इनके अलावा कई प्रकार की बीमारियां है वे भी गंदगी की वजह से हुआ है। और फिर मैं सू मोटो काम एक और देखो, पहले आपने गांव में कोई भी सामान आप लेने जानता दुकान पर जानता तो आपने बस ठूंगा में देता कागज के,
0: कागज है ठूंगा।
1: अब आजकल वह मैनिया चाल गया, अब वह मैनिया जगह है एक कर घर में चीज लाए पचे इन भी ने मन घरों बारह फेंक दे, अब वह कोई नाली बनेड़ी है तो नाली में फंस जाए पर नाली जाम बंद हो जाए, और बिंग पछ के है कि गंदगी जी की है चारों मेर होने लग जाए। तो आज अब एक अच्छी चीज हुई है तो बिंग सागर सागर दरकार इन चीज रही है कि आपने जिका तौर तरीका है आपने जिकी बाण पनेड़ी है भी मैं थोड़ा सो आप सुधार करा, साफ सफाई को महत्व जुको है भी न समझा भी आपनी गली साफ रहेगी, आपनो गांव साफ रहेगा नहीं तो बिंगो फायदा आपा नहीं मिलेगा, पड़ोसी कौन ले।
0: बिल्कुल बिल्कुल संदीप भाई, आई बात आपा के वहा आई बात आपा जीव जिनावर के वह है। तो चालता चालता गीत सुना, आपा गीत चिड़क लिया गावेरी।

0: तुसा गीत चिड़कलियां गावे रे, कालूराम प्रजापति रु गायड़ो, बहुत ही मीठो गीत है। और देखो बजरंग भाई, बातचीत करना को और गीत संगीत को जो आनंद है वो लेना को मनड़ो तो घणो ही करे, पर आ घड़ी देखो के कह रही है।
1: देखो समय री मर्यादा है सा, समय सारू आवणो समय सारू जावणो। अबे आज रे ग्रामीण जगत कार्यक्रम रो समय पूरो हो रियो है। आप रे साथी बजरंग सारस्वत
0: और संदीप पारिक ने सीख दे रहो सा घना
1: घना राम राम, राम, राम।

0: ग्रामीण भाई बहनों ने सुना अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज की प्रस्तुति बजरंग सारस्वत और संदीप कुमार पारीक की थी। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 MHz पर। संध्या के 7:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मीर की इस गज़ल के साथ, रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ के स्वर में। इश्क में मीर दिल को सब्रोताब कहाँ, उनसे नजरें मिली तो ख्वाब कहाँ।
1: मेरे वालिद रोजो शब खुदा की याद में रहते थे, कभी मौज में आते तो फरमाते, बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने में मुतसर्रिफ है, अगर इश्क ना होता तो नज़्मे कुल कायम नहीं रह सकता था। बेइश्क जिंदगी वबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना कमाल है। इश्क बनाता है, इश्क ही कुंदन कर देता है, दुनिया में जो कुछ है इश्क का जहूर है। आग इश्क की सोजिश है, पानी इश्क की रफ्तार है, खाक इश्क का करार है, हवा उसका इस्तरार है, मौत इश्क की मस्ती, जिंदगी इश्क की होशियारी है, रात इश्क का ख्वाब और दिन इश्क की बेदारी है, नेकी इश्क का कुर्ब है, गुनाह इश्क की दूरी है, जन्नत इश्क का शौक है, दोज़ख इश्क का शौक है। कौन मकसद को इश्क बिन पहुंचा, आरजू इश्क, मुद्दा है इश्क, सारे आलम में भर रहा है इश्क।

स्वाति नाटेकर के स्वर में इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं और प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में इस गीत के साथ। आरडी बर्मन का है संगीत इसमें। श्रोताओं, अक्सर हम जिंदगी के इंतजार में होते हैं तो दिल की धड़कनें एक अजीब सी बेकरारी से भर जाती है, तो सोचिए उस दौर का आलम क्या रहा होगा जब मोहब्बत ही थी, मोबाइल नहीं था, न मैसेज न कोई और तरीका, सिर्फ एक उम्मीद थी कि कोई है जो कहीं बैठकर हमारा रास्ता देख रहा है। इसी खूबसूरती और बेकरारी को शब्दों में पिरोए हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और अपनी जादुई धुनों से सजाया है महान संगीतकार। तो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, कहीं करती होगी वो मेरा इंतज़ार।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अगला गीत हम सुनाने जा रहे हैं आपको, एक हाई एनर्जी और मस्ती भरा गीत है, और इंतज़ार के इस खूबसूरत और शांत सफ़र के बाद महफिल के मिजाज को थोड़ा सा बदलता है, ये धड़कनों की रफ़्तार को थोड़ा सा बढ़ाता भी है, क्योंकि अब जो मोड है वहाँ सिर्फ और सिर्फ दीवानगी है, एक ऐसी दीवानगी जो खुले आसमान के नीचे झूमने पे मजबूर कर देती है। जब ये गीत पर्दे पे आएगा तो आपके आंखों के सामने वो गीत दिखाई देने लगेगा, शम्मी कपूर और उनका एक मस्त मौला अंदाज, और आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस प्यार के एहसास को महसूस करने का मौका मिलेगा। सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, कहते हैं कि जब कला अपनी ऊंचाइयों पर होती है तो वो सीधे खुदा की इबादत बन जाती है। संगीत यही हमारी कला है आज की। कुछ ऐसा ही जादू हुआ था साल 1960 में, जब नौशाद साहब ने संगीत निर्देशन में लता जी ने एक ऐसी पुकार लगाई जो आज भी फिजाओं में घूमती है। जब इंसान हर तरफ से मायूस होता है तो वो उस परम सत्ता के दरबार में झोली फैलाता है। इसी बेबसी और अटूट विश्वास को मखमली शब्दों में पिरोया है जनाब शकील बदायूनी साहब ने। आइए सुहानी शाम को थोड़ी देर के लिए अपनी एक इबादत गाह बना देते हैं। पूरी शिद्दत और अदब के साथ सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में सजाइए शाहकार ये गीत, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना।

श्रोताओं, ज़िंदगी की रफ्तार में कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं यहाँ, जहाँ दिल चाहता है कि थोड़ी देर के लिए वक्त ठहर जाए। कभी कभी जज्बातों का तारतम्य कुछ इस कदर बदलता है कि हमें खुद को संभालने के लिए यादों के सबसे गहरे समंदर में उतरना पड़ता है। और जब बात यादों की हो ही रही है, वक्त की और ज़िंदगी के सन्नाटों की हो रही है, तो सिनेमा के इतिहास में उस महान कृति से बेहतर क्या होगा जिसे हम कागज़ के फूल कहते हैं। इस फिल्म के गीत कैफी आज़मी के शब्द और सचिन देव बर्मन का संगीत जो खामोशी को भी सुरीला बना देता है। तो आइए गीतादत्त जी की इस बेहतरीन आवाज़ में सुनते हैं दर्द भरी वो ख्वाहिश जो पूछती है कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम।

श्रोताओं, ज़िंदगी का असली फ़लसफ़ा यही है कि उदासी के बाद मुस्कुराहट का आना लाजमी है। तो चलिए उस संजीदगी के बाद अब महफिल के मिजाज को थोड़ा सा हल्का फुल्का बनाते हैं और माहौल में थोड़ी शरारत और थोड़ी सी उमंग घोलते हैं, ठीक है। फिल्म तीन देवियां का एक ऐसा ही नटखट नगमा अब आपके सामने आने जा रहा है। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस चुलबुले लफ्ज़ों को SD मर्मन ने अपनी धुन दी तो कमाल हो गया। और सोने पे सुहागा तो ये की से सजाया है आशा भोंसले जी ने, मतलब एक बेहतरीन लाजवाब अंदाज में, लेकिन किशोर कुमार ने तो उसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो सुनते हैं, अरे यार मेरी तुम भी हो गज़ब, घूंघट तो ज़रा ओढ़ो।

फिल्म चिराग के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सीमा मिश्रा के स्वर में इस लोकगीत के साथ। रुपीड़ो तो लेर में कहाँ गई थी, देखते हैं।

लोक संगीत का ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं समंदर खां को। जुगलबंदी कर रहे हैं सत्तार खां, रमजान खां और साथी।

0: समंदर खां के स्वर में इस लोक संगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। आप सुनेंगे अब समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप।

0: क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितुआंग को गिरफ्तार किया है। थान सितुआंग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा

चार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सोचता हूँ इस सफ़र की शुरुआत करते हैं उन एक ऐसी फिल्म के साथ जिसने सफलता के नए कीर्तिमान रचे थे। फिल्म का नाम है आराधना। जब दार्जिलिंग की वादियों में एक छोटी सी टॉय ट्रेन चलती है और उस ट्रेन की खिड़की से झांकती शर्मीली सी अदा को देखकर अपने दिल का हाल बयां करता है, तो वो धुन हमेशा के लिए अमर हो ही जाती है। तो सुनते हैं मेरे सपनों की रानी, बिल्कुल ट्रेन की छत से।

दार्जिलिंग की वादियों से संगीत का ये सफ़र अपनी पटरी पर ही आगे बढ़ रहा है। रेलगाड़ी की गति और उसकी छुक छुक की लय को संगीत में किस तरह पिरोया जाता है, ये अगला गीत जो हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये उसका बेहतरीन उदाहरण है। फिल्म जमाने को दिखाना है इसके इस गीत में आर डी बर्मन ने ट्रेन की गति और उसकी सीटी को संगीत के साजों की तरह बहुत ही खूबसूरती से उपयोग किया है। मजल सुल्तानपुरी के लिखे चुलबुले बोलों को कितना मोहम्मद रफ़ी ने की तरह जो प्रस्तुति की है शैलेंद्र सिंह की, बेहतरीन ये गीत है। और इस ऊर्जा को हम फिर से महसूस करते हैं ट्रेन के साथ। होगा तुमसे प्यारा कौन।

श्रोताओं, सुरों की पटरी पर दौड़ती हमारी संगीतमय एक्सप्रेस अब अपने आखिरी स्टेशन पर आ पहुंची है। तो सुनते हैं अगली रचना, जिसमें आनंद बख्शी ने बेहतरीन लिखा है, आर डी बर्मन ने रचा है और किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने अपनी जुगलबंदी से इस गीत को बेहतरीन आनंद दे दिया है। फिल्म अजनबी का गीत, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया, मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
2: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
1: कूपे में भी?
2: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
1: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
2: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
2: वहां सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
3: अच्छा, मैम साहब आ गए? आप तो कह रहे थे।
1: सुनो कंडक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको, सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
2: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल 1 कॉफी।
3: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
2: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
2: ओके।
3: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
2: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लूं। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
4: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है। मेरी तरह।
2: अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
4: अच्छा, मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
2: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
4: मेरी शादी नहीं हुई है।
2: क्या?
4: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं। ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
2: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
4: कई वर्ष हो गए।
2: आपके बहुत मित्र हैं।
4: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
2: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
4: करती हूँ।

0: उनसे मुझे आनंद मिलता है। उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है। तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं महात्माओं योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो? बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
1: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
3: अरे आप एक लिखे जा रही हैं?
2: ओह, कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
0: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
0: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
2: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
0: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
2: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
0: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
2: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
0: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
2: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
0: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
2: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
0: पीजिए।
2: बुरा मान गई, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियाँ, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
0: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
2: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती, दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
0: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
2: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
0: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
2: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
0: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
2: ना ना ना ना ना, नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडित के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही हैं? प्लीज।
0: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडित के साथ बहुत रहे हैं।
2: बहुत से देशों में

0: साथ घुमा हूँ।
1: We have made love many times, लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडित को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
2: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
1: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
1: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
2: बैठे रहो।
1: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
2: नहीं।
1: तुम्हें छू सकता हूँ?
2: नहीं।
1: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
2: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
1: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सांत्वना।
2: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
1: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
2: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
1: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी?
2: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
1: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज सांत्वना, प्लीज।
2: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
1: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
2: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
1: प्लीज
2: मत, तेज पुंज है, औरत उसकी तेज को छीनने वाली है।
1: देखो,
2: ये दलीलें अब बासी हो
1: चुकी हैं।
2: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश है।
1: अब मैं नहीं,
2: मैं कहती हूँ इसे क्षण उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
1: नहीं,
2: जाते हो या नहीं?
1: सांत्वना,
2: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
2: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
2: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
2: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
1: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
2: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं ना कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था

0: से पूछा था। मार्था, बुरा तो ना मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुम में? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था?
0: अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था?
2: तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा।
0: शब्दों के मायाजाल में फंसने की चेष्टा मत करो, ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है।
2: लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो, इसी द्वंद से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है, इस छद्म को उतार फेंको।
0: ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई, कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद स्टेपे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे?
2: क्या इसी मुक्ति की खोज

0: में मैं साधना केंद्र में नहीं आई। इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसे मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के बिना नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सा छत इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हूँ।
1: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
1: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
1: अच्छा अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: मम्मा, तुम आज बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
1: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
1: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
1: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
1: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
1: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? कैसे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
5: सांत्वना। सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
5: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
5: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
5: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
5: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
1: शिकार? ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
1: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी मैं आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा।

0: अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
0: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
0: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद्म मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना प्लीज।
1: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया, कौन हो तुम, क्या चाहते हो?
2: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था, ओह ये मार्था तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
2: ओह देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत, भाई बधाई।
0: निगम इनसे मिलो, यह है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
2: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सीलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
2: आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
2: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
0: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आप में भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यही उतरूंगी।
0: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
0: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछोह का स्थान।
1: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछोह का स्थान है वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
0: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
1: कंडक्टर मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
3: जी अभी आया, लाइए मैं उतारे देता हूं, आप उतरिए।
1: ये लीजिए।
2: गई, अब तो मैं आ सकता हूं, खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले आओ।
0: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूँ।

0: रूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल लांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा।

0: भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत है सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chaliskao, Maharashtra, and inspired by his late father, Sri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Varkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Sri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

अभी आपने सुना कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। इसमें आज आपने सुना प्रख्यात बांसुरी वादक विवेक सोनार का बांसुरी वादन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लूटापघात से अपना बचाव करें। घर से दोपहर में निकलें तो हल्के रंग के कपड़ों से ढके हुए ही निकलें।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना

0: Delhi Capitals were 147 for 3 in 15.4 overs when reports last came in. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की अंतिम सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।